0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور سپہر کے 3 بجے سے 4 بجے یعنی کہ 1 گھنٹے تک آپ کے ساتھ ہوں ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں. اس نشریات میں کیا کچھ شامل کریں گے, اس میں ہوگا ہفتہ رفتہ جس میں آپ کو سنوائیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ, قدرتی مناظر اور فطرت سے قرب کیسے لوگوں کے لیے دوا کا کام کرتا ہے یہ جانیں گے ہم ایس بی ایس ایگزامنس کی اس ہفتے کی قسط میں. ویزا فیسوں میں اضافے کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ بھی کریں گے شامل نشریات میں, جبکہ معروف اداکار سہیل سمیر کی ایس بی ایس اردو سے گفتگو بھی آج کی نشریات کا حصہ ہے. مختلف گیت اور صوفیانہ کلام بھی نشریات میں شامل کرتے رہیں گے گاہے بگاہے, لیکن سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں اور آسٹریلیا میں یہ ہفتہ کیسا گزرا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہے جمعہ 3 جولائی 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. بونڈائی دہشت گرد حملے پر آن لائن پوسٹوں کے باعث قانونی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے. ادھر 11 سالہ بچے کے باعث ہونے والے حادثے میں 9 راہب ہلاک ہو گئے, جبکہ ایران نے آبنا ہرمز کے حوالے سے تازہ وارننگز جاری کی ہیں. اور اب مزید خبریں. آسٹریلیا کے آزاد آن لائن سیفٹی کمشنر نے ایلون مسک کے خلاف 3 سخت قانونی لڑائیوں کا آغاز کیا ہے, جن پر اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نفرت کو ہوا دینے کا الزام ہے. پیر کے بعد سے رائل کمیشن برائے یہود دشمنی نے نفرت انگیز تقاریر کو جاری رکھنے میں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے کردار کا جائزہ لیا ہے. ای سیفٹی کمشنر جولی انمن گرانڈ نے انکوائری کو بتایا کہ ایلون مسک کے سوشل پلیٹ فارم ایکس نے بونڈائی قتل عام کی خوفناک فوٹیج آن لائن جاری رکھی تھی. تھائی لینڈ میں ایک 11 سالہ لڑکی کی وجہ سے پیش آنے والے حادثے میں 9 راہب جاں بحق ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکا ایک پک اپ ٹرک چلا رہا تھا جو ملک کے شمال مشرق میں عبادت کے لیے جانے والے راہبوں سے ٹکرا گیا. دارالحکومت بینکاک سے تقریباً 600 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع صوبہ مکداہن سے کل 35 راہب عبادت پر جا رہے تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ بچہ کنٹرول کھونے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت کے بغیر گاڑی لے گیا تھا. ادھر وینزولا میں آنے والے 2 شدید زلزلوں کے 8 دن بعد امدادی کارکنوں نے ایک منہدم شاپنگ سینٹر کے نیچے سے ایک 43 سالہ سیکیورٹی گارڈ کو زندہ نکال لیا ہے. ہنان البرٹو گل فلورس کو لاگویرا ریاست کے کیٹیا لامار میں واقع گیلرس لیا گرانڈے شاپنگ سینٹر کے تہخانے سے بچایا گیا, جہاں وہ 24 جون کو آنے والے زلزلوں کے بعد پھنس گئے تھے. ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ لمحہ ان کئی دنوں کی غیر یقینی صورتحال کے بعد ان کے لیے راحت لے کر آیا ہے. ادھر ایران نے آبنا ہرمز کے حوالے سے ایک تازہ وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو تہران کے مقرر کردہ راستوں پر عمل کرنا چاہیے, بصورت دیگر ان بحری جہازوں کو اس کے فوری اور شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایران کا کہنا ہے کہ جو بھی جہاز اس کے نیویگیشن پروٹوکول کو نظر انداز کرتا ہے اسے فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور اس نے خبردار کیا ہے کہ امریکی مداخلت کو اس کی خود مختاری کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا. ادھر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ان خواتین سے رسمی معافی माफी मांग ली है जिन्हें मुल्क की साबका तारीखी पॉलिसी के तहत अपने बच्चों को छोड़ने पर मजबूर किया गया था। तफसीलात के मुताबिक एक तखमीना है कि बरतानिया में इस पॉलिसी के तहत तकरीबन 1,85,000 बच्चों को उनकी माओं से जुदा किया गया था जो बेशतर तौर पर साल 1949 से 1976 के दरमियान ईसाई चर्चों की मदद से नाफिज की गई। याद रहे चर्च ऑफ इंग्लैंड ने पहले ही अपने किरदार के लिए माफी मांग ली है। उधर हुकूमत का कहना है कि एक ग्रुप जिसमें चीनी शहरी शामिल थे और जो इस हफ्ते शुमाली क्वींसलैंड के साहिल पर कश्ती के जरिए पहुंचे थे उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया है। वजीर दाखिला टोनी बर्क ने एक बयान जारी किया जिसमें तस्दीक की गई कि हर शख्स जो बगैर वीजे के ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था उसे अब मुल्क से निकाल दिया गया है। दो अफराद पर इस वाकये के सिलसिले में इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद किया गया है और वो वीडियो लिंक के जरिए क्रेंस की अदालत में पेश हुए हैं। शैडो होम अफेयर्स मिनिस्टर जोनो डेनियाम ने चैनल 7 के सनराइज को बताया कि यह वाकया बताता है कि बॉर्डर प्रोटेक्शन सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। उधर आजादाना अराकीन की एक इत्तेहाद ने इंग्लैंड की इस दरख्वास्त की हिमायत की है कि हुकूमत को ऑनलाइन जुए के इंक्वायरी की सिफारिशात मुकम्मल तौर पर नाफिज करनी चाहिए। ये इंक्वायरी मरहूम पेटा मर्फी की जेर सदारत हुई थी। डेविड पोकॉक, जैली स्टेगल, एंड्रियो विल्की, मोनैक रियान और एलगेरा स्पेंडर शामिल हैं उस ग्रुप में जो जल्द आने वाली कानून साजी से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर चुका है। हुकूमत का बिल बराह रास्त खेल के दौरान इश्तहारात को महदूद करेगा, गैर कानूनी खिदमात पर हमला करेगा और कौमी सेल्फ एक्सक्लूजन रजिस्टर को मजबूत बनाएगा, लेकिन नाकिदीन का कहना है ये इकदाम काफी नहीं है। फाउलर के वियतनामी निजात वफाकी रुकन डिलाय उन लोगों में शामिल हैं जो ज्यादा मजबूत इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं, ये कहते हुए कि कसीर सकाफती कम्युनिटीज गैर मुतनासिब तौर पर जुए के नुकसानात का शिकार होती हैं। उधर इंसानी हकूक कमीशन की एक रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशन के लोगों को दरपेश निजामी नाइंसाफियों को रोकने के लिए मजीद बयानबाजी के बजाय हकूक फराहम करने का मुतालबा किया गया है। समाजी इंसाफ की रिपोर्ट ने 1600 से जायद मकामी ऑस्ट्रेलियन शहरियों के तजर्बात की बुनियाद पर मसावात की राह में एक बड़ी रुकावट के तौर पर नस्ल परस्ती की निशानदही की है। इसने 25 सिफारिशात पेश की हैं और 2 साल कबल मुतारफ कराए गए कौमी इंसदाद नस्ल परस्ती के फ्रेमवर्क को फौरी तौर पर नाफिज करने और कौमी इंसानी हकूक के कानून की कानून साजी का मुतालबा किया है। एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर सोशल जस्टिस कमिश्नर केटी किस का कहना है कि फौरी कार्रवाई की जरूरत है। उधर मेक्सिको के खूबसूरत रिजॉर्ट टाउन से गायब होने वाली एक ऑस्ट्रेलियन शहरी की बैन अल-अक़वामी तलाश जारी है। इंटरपोल ने ऑस्ट्रेलियन शहरी के लिए अलर्ट जारी किया है जिनकी शनाख्त 35 साल मगरबी ऑस्ट्रेलियन जेसी ब्रोजे के तौर पर की गई है। गैर मुल्की उमूर और तजारत का महकमा, मगरबी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस और मकामी मेक्सिको की अथॉरिटीज भी इस तलाश में शामिल है। सोशल मीडिया अपील में कहा गया है कि ब्रोसे का आखिरी मकाम मालूम रिवेरा माया में था जो कैनकॉन के करीब कैरेबियन साहिल के साथ एक रिजॉर्ट टाउन है। उधर जनूबी ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज कहती हैं कि हाल ही में एक हिजरत करके आने वाले परिंदे के केस की तस्दीक के बावजूद बर्ड फ्लू के मकामी जंगली हयात की आबादियों में फैलने का कोई सबूत नहीं है। याद रहे मगरबी ऑस्ट्रेलिया में 3 केसेस की तस्दीक की गई है और वो सब केसेस हिजरत करके आने वाले परिंदों में पाए गए। इतवार को जनूबी ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर ने कहा कि 20 जून से अब तक पब्लिक हॉटलाइन में 520 से ज्यादा रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद 23 टेस्ट हुए लेकिन सिर्फ 1 केस की तस्दीक हुई है। सामईन आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर 3 जुलाई 2026 का हफ्ता रफ्ता और मैं हूँ अर्दा वकार। जी सामईन, तो हफ्ता रफ्ता आपने समाप्त किया तो फिर यहाँ ये याद दहानी भी सुनते चलें कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरकी वक्त के मुताबिक सुपहर 3 बजे साउथ एशियन पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे बुध को ही नशर होता है और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। उसके अलावा SBS उर्दू इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद है। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब करके आप यूट्यूब पर अपनी पसंद के औकात में अपनी पसंद के पॉडकास्ट सुन सकते हैं। उसके अलावा कुछ तवील दौरानिए की वीडियोस भी SBS उर्दू के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जिनके मुख्तसर रील्स आप देख सकते हैं SBS उर्दू के इंस्टाग्राम पेज पर। कुछ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं SBS उर्दू के इंस्टाग्राम पेज पर, जबकि कुछ तफसीली पॉडकास्ट और रोज़ाना की खबरें आप समाप्त कर सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर। SBS उर्दू के फेसबुक पेज के जरिए आप हमसे रابطہ भी कर सकते हैं और हमसे पैगाम रसानी भी कर सकते हैं। हमें ये पैगाम आप भेज सकते हैं कि आपको नशरियात में क्या कुछ पसंद आ रहा है। हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन से ऐसे मौजूदात हैं जो आप SBS उर्दू की नशरियात में सुनना चाहते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि कौन से गीत और कौन सी मौसीकी ऐसी है जो SBS उर्दू अपनी नशरियात में शामिल करे। हमसे अपनी मुनफरिद कहानियां भी शेयर कर सकते हैं जो आप सामईन को सुनवाना चाहते हैं। इस सब के लिए आपको सिर्फ हमें पैगाम इरसाल करना है SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर। इसके साथ ही आपको सुनवाते हैं सज्जाद अली का बारिश।

0: शामिल हो गया है, जहां वीज़े की दरख्वास्त देने की फीसें सबसे ज़्यादा हैं। ये एक महंगा मुल्क बन गया है। इस हवाले से तफसीली पॉडकास्ट सुनिए अफनान मलिक से।
1: सामईन, 1 जुलाई 2026 के आते ही नए माली साल में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से वीज़ा फीस में नुमाया इजाफे का नोटिस जारी कर दिया गया है, जहां पर कई वीज़ा की फीस में तकरीबन 25% तक का इजाफा देखा जा रहा है। जहां पर तमाम वीज़ा फीस मुतासिर हुई हैं, वहीं सबसे बड़ा इजाफा स्टूडेंट वीज़ा फीस और 485 वर्क वीज़ा में किया गया है। 485 वर्क वीज़ा की फीस साल में दूसरी मर्तबा बढ़ाई गई है, जो गुज़िश्ता बरस $2,600 से बढ़कर पहले $4,600 और अब तकरीबन $5,750 हो चुकी है। इस सिलसिले में आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि आया ये फीस किस तरह से बढ़ाई गई है और इसका लोगों पर किस तरह का असर पड़ेगा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली लाखानी, जो कि विजन कंसल्टेंसी के नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं और गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से मारा एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान SBS उर्दू से बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो फीस में इजाफा है, ये किस तनासुब से किया गया है?
2: ये फीस अराउंड 25% बढ़ाई गई है, जबकि इन्फ्लेशन करीबन 4% चल रहा है।
1: तो ये मुझे साथ बताइएगा कि इस फी के अंदर जब हम 485 और स्टूडेंट वीज़ा देखते हैं, अब उनकी फीस इस वक्त किस जगह पर खड़ी है? एक बड़ी बात की जा रही है 485 के बारे में कि ये फीस बार बार बढ़ाई गई है, इस सिलसिले में भी बताइएगा।
2: स्टूडेंट की फीस जो पहले $2,000 थी, चाहे वो ऑफशोर से अप्लाई करते हैं या ऑनशोर पे वीज़ा एप्लीकेशन लॉज होती हैं, जो 2,000 थी वो 2,500 हो गई है। 485 की जो एप्लीकेशन थी जो ऑनशोर पे थी, उसकी फीस अभी 4,600 थी, बढ़ के अब हो गई 5,750। ये मैं बात बताते चलूँ आपको कि ये फीस फरवरी 28 तक, इसकी फीस 2026 में इसकी फीस 2,300 थी। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसकी फीस 4,600 की थी और दोबारा फीस गवर्नमेंट ने ये 5,750 कर दी है। तो विद इन अ वन ईयर, विद इन 6 months, ये फीस 2,300 से लेके 5,750 कर दी गई है।
1: तो अब एक, अगर हम तीन बंदों की फैमिली की बात करते हैं, चूंकि ये फीस तो एक इंडिविजुअल वीजा एप्लीकेंट की है, लेकिन मिसाल के तौर पर एक बंदा यहाँ पर PhD करने के लिए आया है और उसके साथ फैमिली मौजूद है, तो वो कितनी फी देगा? और अगर वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है और उसके साथ एक पार्टनर भी मौजूद है, तो वो 485 के लिए तकरीबन कितनी फीस अदा करेगा वीज़े कीमत में?
2: अगर वो PhD कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, और उसको वीज़ा मिला है सपोज 3 साल का, पर किसी वजह से उसके रिसर्च रुक गई है और उसको अब 3 या 6 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कराना है, तो एक नई वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करेगा वो, शायद 3 महीने के लिए हो, चाहे 2 महीने के लिए हो। अगर वो अकेला है और उस सूरत में उसकी फीस $2,500 है, मगर लेकिन उसके पास अगर उनकी वाइफ है और साथ में एक बच्चा है, तो उसकी फीस होगी $4,530, चाहे वो 2 महीने के लिए वीज़ा एक्सटेंड करना चाह रहा हो। पर वही एप्लीकेंट अगर वो सोच रहा है कि उसको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 485 अप्लाई करना है, तो उसकी टोटल फीस हो जाएगी $10,075।
1: तो ये जब हम तकाबली जायजा लेते हैं उन तमाम मार्केट से जिनके अंदर इस वक्त स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जिनमें बड़े ममालिक शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, कैनेडा है, न्यूजीलैंड है, तो इस तमाम तनाजुर में आप ऑस्ट्रेलिया को कहां पर देखते हैं, खास तौर पर इस वीजा फी के तनाजुर में?
2: अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया कॉम्पिटिटिव नहीं है फी के मुकाबले में। अगर फी की बात की जाए तो हम US, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करते हैं, इवन न्यूजीलैंड को भी साथ में कंपेयर करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की फीस सबसे ज्यादा है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि मेरी खुद की भी ब्रांचेस हैं आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, वो भी स्ट्रगल करती हैं ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट करने के लिए।
1: ये बताइएगा कि ये ना सिर्फ ये वो वीज़ाज हैं जो अमूमन अप्लाई किए जाते हैं, अलावा अजी इन वीज़ाज को ब्रिज करने के लिए जो ब्रिजिंग वीज़ाज हैं, उनकी फी में भी कोई तब्दीली की गई है क्या?
2: बिल्कुल वो की गई है, और वो तो बहुत ही ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है। पहले मैं ब्रिजिंग का मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रिजिंग वीजा बी अप्लाई करना होता है जब कोई भी किसी भी एप्लीकेंट के पास वीजा प्रोसेस चल रही होती है, उसके बाद ब्रिजिंग ए होता है, उसको अगर अपनी कंट्री को ट्रेवल करना है, वापस आना है, तो ब्रिजिंग बी चाहिए होता है। उसकी फीस कल रात तक $190 थी, गवर्नमेंट ने बढ़ा के $575 कर दी है ब्रिजिंग बी की फीस। ब्रिजिंग बी का मकसद ये होता है कि जो वो लोग जिनके वीजा एप्लीकेशन ऑनशोर पे चल रही हैं बट उनको ट्रैवल करना है, तो उनको ट्रैवल करके वापस आते हुए ये वीजा की रिक्वायरमेंट होती है। मैं एक एक भी बात आपको बताऊं कि 491 का जो वीजा है उसका प्रोसेसिंग टाइम 15 महीने से 23 मंथ चल रहा है, 23 महीने चल रहा है। 190 के एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में 13 महीने से 17 महीने टाइम लग रहा है। अगर इतना टाइम लगेगा किसी भी एप्लीकेशन को, तो फिर इन एप्लीकेंट्स को अपनी फैमिली से मिलने के लिए या उनको कोई भी और एक्टिविटी से या फिर उनको घूमने के लिए भी अगर बाहर जाना है किसी कंट्री में, न्यूजीलैंड जाना है, तो उनको वीजा लेना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली ये उनको पे करना पड़ता है। पहले ये $100-$200 बढ़ बढ़ के अब ये मुझे लग रहा है जैसे $500 कर दिए हैं, मुझे तो लग रहा है शायद ये अगले साल $1,000 हो जाएगा।
1: फाहद जब्बार एडलिंक के नाम से एक कंसल्टेंसी भी चलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जब फाहद बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो फीस बढ़ने का फैसला है, क्या ये मतवक्को था या मार्केट के अंदर ये खबर जो थी वो एक सरप्राइज थी?
3: सिनेरियो ये है कि जो कि इनी अकाउंट था जो कि पोर्टल होता है इमिग्रेशन का, इट वाज अंडर मेंटेनेंस फ्रॉम 6 PM लास्ट नाइट। उसका सिनेरियो ये होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला होता है और उस टाइम पे इस तरह का कुछ होता है, सो देर आर थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड। हमें एक्सपेक्ट होता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का होने वाला है, बट ये एकदम से जो बहुत ज्यादा फी इंक्रीज हो गई है इसका एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं जो हम सोच रहे थे कि शायद के पोर्टल के अंदर हो जाएंगे, जो कि हुए भी हैं, बट द मेन थिंग इज के जो फी है उन्होंने वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर दी है। स्टूडेंट वीजा की फी जो कि ऑलमोस्ट $700 हुआ करती थी, उसको इंक्रीज करके पहले $1,600 किया, फिर $2,000 किया, एंड नाउ इट्स $2,500। और सेम सिनेरियो 485 की फी का है, 4,600 इंक्रीज कर दी गई थी, नाउ 5,750, 5,000 से भी ज्यादा हो गई है। तो जो स्टूडेंट वीजा पे अपनी टीआर डालने की कोशिश कर रहे थे और जस्ट वेट कर रहे थे अपने कम्पलीशन का, वो सारे स्टूडेंट्स की अब हमें कॉल्स आ रही हैं, देयर सेइंग कि हम क्या करें, आप बताएं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है।
1: आप ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो लोगों के आपके पास मसाइल आते हैं वो क्या स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च कर रहे होते हैं या फिर वो वर्क वीज़ा यानी 485 की तरफ उनका रुझान होता है?
3: देखें इसका सिनेरियो ये है कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी जिन्होंने स्टूडेंट वीजा की एक्सटेंशन डालनी होती हैं और जिन्होंने अपनी टीआर डालनी होती है। कोई भी स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान से वीजा अप्लाई कर रहा होता है या किसी भी और कंट्री से वीजा अप्लाई कर रहा होता है, वो तो बेसिकली स्टूडेंट वीजा ही अप्लाई कर रहा होता है। जब वो ऑनशोर आ जाते हैं तो फिर उन्होंने आके अपनी स्टूडेंट वीजा की एक्सटेंशन भी डालनी होती हैं, अगर वो टाइम से अपना कोर्स कम्प्लीट ना कर सकें या कोई स्विच कर लें कोर्स, एंड देन उन्हीं स्टूडेंट्स ने बाद में टीआर भी डालनी होती है। सो इट्स अ 50-50 रेशो, लेकिन मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स जो कि टीआर पे जा रहे थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि टीआर की फी अभी कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ $2,600 थी, समवेयर अराउंड दैट, और वो एकदम से इंक्रीज करके $4,600 कर दी गई, और अब 4,600 से भी $5,700 से भी ऊपर चली गई है। स्टूडेंट वीजा की फी में हालांकि इतना डिफरेंस नहीं आया, 2,000 थी उसको 2,500 कर दी है, लेकिन जो मोस्ट इफेक्ट हुए हैं इससे वो बेसिकली वो स्टूडेंट्स हुए हैं जो कि टीआर पे जा रहे थे।
1: इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही वीजा एप्लीकेंट जो हाल ही में ये वीजा लॉन्च करना चाहते हैं और वो इन्हीं बढ़ती हुई कीमतों से मुतासिर हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि आप कब ये वीजा लॉन्च करना चाह रहे थे और इससे किस तरह से मुतासिर हुए हैं?
4: अच्छा, मैंने जो है वो मेरा माइंड था कि मैं लास्ट वीक वीजा अप्लाई करूं, लेकिन इंश्योरेंस लेना, इस तरह की चीज़ें सारी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि 1 जुलाई से जो है वो एकदम जो है वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फीसेस इंक्रीज हो जाएंगी। तो लास्ट डे तक, कल तक मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो पूरे थे, खाली एक जो चीज़ थी वो मिस थी। तो रात को जिस टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉल पे था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे ये मैसेज कन्वे किया कि आपने टीआर अप्लाई की है या नहीं। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ की जो है ना वो टीआर अप्लाई करनी थी, वो ऑफशोर होती हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस तरह आप चेक करें जाके पोर्टल पे, क्योंकि फीसेस वगैरह बढ़ गई हैं। तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्यों, क्योंकि पहले प्रीवियस जो है ना वो फीस 4600 समथिंग थी, तो उसके बाद एकदम ये जंप लेके फीस 57 समथिंग पे चली गई है। तो जरी बात है, ये एकदम सडन इतना बड़ा जो है वो इसने जंप लिया है। तो प्रीवियस जो है वो मेरा माइंड 46 समथिंग के मुताबिक चल रहा था, तो मैंने उस तरह अपना जो है वो बजट मैनेज किया हुआ था, तो एकदम जो है वो 1000 अबव हो गया काम। तो अब फिर जो है वो चीजें थोड़ी दोबारा सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जरी बात है, फीस इंक्रीज हो गया तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले फीस जिस जो फीस थी उसके मुताबिक हम लोग चल रहे थे, अब फीस चेंज हो गई है, जरी बात है पे तो हम नहीं करना है। तो एट दी एंड जो बर्डन है वो जो टीआर एप्लीकेंट होता है उसी पे आता है, क्योंकि मैं अब इस वीजे के को अप्लाई करने जा रहा हूँ वाइफ के लिए, तो अब ये इम्पैक्ट मेरे पे है कि अब मैंने कैसे दोबारा ये चीजें मैनेज करनी है। तेरी बात है, 1000 का एकदम गैप आया, अब मुझे फिर 5 दिन 10 दिन और चाहिए होंगे, क्योंकि पहले मैं 46 समथिंग के हिसाब से चल रहा था, अब मैं 57 पे जाऊंगा तब मेरा वीजा अप्लाई होगा। तो ये चीजें जो है ना, ये एकदम सडन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो एप्लीकेंट होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कम से कम इन चीजों के बारे में जो है वो 10-15 दिन 20 दिन महीना पहले ये चीजें थोड़ी जो है ना वो हाईलाइट होनी चाहिए, ताकि जैसे अब मैं इसका विक्टम हूँ, तो मैंने तो ये वीजा अप्लाई करना था 2 दिन पहले, लेकिन मैं किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं कर सका। अब मैं अप्लाई करूंगा तो मैंने 1100 ज्यादा फीस देनी है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये चीजें कम अज कम 1 महीना पहले जो अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए कि ये चीज क्लियर कर दें, ताकि जिन्होंने अप्लाई उस टाइम करना हो तो वो अप्लाई कर लें। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है।
1: ये थी आज की पॉडकास्ट, आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूँ अफनान मलिक।
5: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
0: जी सामईन, तो इसके साथ वक्त हो रहा है कि हम नशरियात में लें दूसरा वक्फ़ा, लेकिन जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो आपको सुनवाएंगे कि कुदरती मनाजिर और फितरत से करीब रहना इंसानी सेहत और जहन पर क्या असरात मुरतब करता है। SBS एग्जामिन्स के पॉडकास्ट पे तो हमारे साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
11: sbs.com.au/urdu ko apna online ghar banaye. Taza tareen khabrein, halaat-e-hazra aur tafreehi program. sbs.com.au/urdu par. SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। SBS उर्दू फेसबुक पर।
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, نشریات کے اس حصے میں ہم آپ کو سنوائیں گے ایس بی ایس ایگزامنس کی قسط. ایس بی ایس ایگزامنس پر آپ مختلف موضوعات کے حوالے سے پوڈ کاسٹ سنتے رہتے ہیں, جن میں اسلاموفوبیا, اینٹی سیمیٹزم اور نسل کشی, نسل پرستی کے حوالے سے پوڈ کاسٹ بھی شامل ہیں. اس ہفتے کی قسط میں ایک حالیہ تحقیق میں قدرتی مقامات کو نہ صرف ملاقات کی جگہ کے طور پر استعمال کیا گیا بلکہ اس کو ایسے ماحول کے طور پر بھی استعمال کیا گیا جہاں پناہ گزینوں کو بلا پوچھ گر یا فیصلہ سنانے کے تحفظ کے بغیر تحفظ کا احساس ہو. اس حوالے سے ایس بی ایس ایگزامنس کی اس ہفتے کی قسط میں جانیے کہ ایل جی بی ٹی کیو آئی کمیونٹی نے اس پورے تحقیق سے کیا اثر لیا.
12: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
13: My journey in Australia was not easy. I was struggling with English, loneliness and my acceptance sexuality and identity.
0: 1980 کی دہائی میں جاپان نے شیرن یو کو متعارف کرایا, جسے جنگل میں نہانے یا جنگلی ماحول سے لطف اندوز ہونا کہا جاتا ہے. اس کا مقصد ٹیکنالوجی کے تھکاوٹ کا علاج کرنا تھا اور لوگوں کو ملک کے جنگلات کے ساتھ دوبارہ جوڑنے اور ان کے تحفظ کی تحریک کو آگے بڑھانا تھا. 1990 کی دہائی میں محققین نے کچھ جنگلاتی عناصر کے جسمانی اثرات کا مطالعہ شروع کیا, جیسے لکڑی کی خوشبو, بہتے ہوئے پانی کی آواز اور جنگل کے مناظر. انہوں نے دریافت کیا کہ قدرت میں وقت گزارنا دباؤ کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے, اور موجودہ ایک مقامی مطالعہ جو میلبرن میں کیا گیا اس میں یہ پایا گیا کہ یہ بھی تنہائی کو کم کر سکتا ہے, جو کہ ایل جی بی ٹی کیو اے آئی پلس مہاجرین اور پناہ گزینوں کے ایک گروپ کے ساتھ کیا گیا. اس قسط میں ہم دریافت کر رہے ہیں کہ قدرت کس طرح تنہائی کا مقابلہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے.
14: Being LGBTIQ can be itself isolating in terms of accessing community and you know, building relationships and connecting to people here in Australia. Many of our community members tell us that people from their own cultural background are the ones that they feel least safe with and least connected to here in Australia, because they represent a kind of a culture that people have had to flee from in order to be safe.
0: ایان سیل میلبرن میں ایل جی بی ٹی کیو آئی اے پلس پناہ گزینوں اور پناہ کے متلاشیوں کی مدد کرنے والی ایک تنظیم مینی کلرڈ اسکائی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں.
14: Loneliness is a huge challenge for the community that we work with, and yeah, I think that comes from the fact that being both LGBTIQ and newly arrived means that the places where you feel safe and welcome are quite small and far between, and many of our community members talk about having to make a choice between, do I stay connected to my culture and my background and my family and community, or do I find a place in LGBTIQ plus community, and there's a difficult navigation between those.
0: میم کو 11 سال پہلے ویتنام سے آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد اسی کا سامنا کرنا پڑا.
13: Back then I were very shy and my English is limited, so I mostly stay with my Vietnamese community and my extended family member, so in that I feel safe, but I don't really go outside much.
0: 2017 میں انہیں پتا چلا کہ آسٹریلیا میں ان کے خاندان نے ہم جنس شادی کو قانونی قرار دینے کے خلاف ووٹ دیا ہے.
13: And then I keep it everything for myself and I try to hide my sexuality and my identity as well. Over time I hear people talk about me, like when I come out like a lesbian, they always said like, you got mental health, you are not lesbian. So I was so confused and I have no one to talk. I withdrew myself.
0: میم کو مینی کلرڈ اسکائی سے متعارف کروایا گیا اور انہیں ان کی بدھ کی رات کی عشائیوں میں شرکت کی ترغیب دی گئی.
13: So since the first big Wednesday I keep coming there. So I come in there for myself. I'm not coming for anyone, for myself, because I feel safe in there. I feel welcome and I feel accepted like who I am.
0: اس پروگرام کے ذریعے میم کو 36 دوسرے ایل جی بی ٹی کیو آئی اے پلس پناہ گزینوں اور پناہ طالبوں کے ساتھ 8 ہفتے کے قدرتی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی گئی.
15: We want to see how can nature help to build community where people feel less lonely and more connected to each other and place.
0: نرگیس اوپاچن یونیورسٹی آف میلبرن میں قدرت اور انسانوں پر ریسرچ کے سینئر فیلو ہیں. تحقیق کی قیادت کرتے ہوئے نرگیس نے یہ جانا کہ کیسے قدرتی نسخہ یا دوا, یعنی ایک صحت مند पेशावर की तरफ से लिखी गई वो तजवीज़ जो एक शख्स की सेहत पर बेहतरी के लिए असरात मुरतब करे, कुदरत में ज़्यादा वक्त गुजारने से इस ग्रुप पर क्या असर डालेगी। और दुनिया के दीगर 5 शहरों में बशमूल बार्सिलोना और प्राग दीगर मुहक्किकीन और ग्रुपों के साथ यही काम हो रहा है जिसे कम आमदनी वाले तबकात और बुजुर्ग अफराद के साथ तहकीक की गई है।
15: It was the key of the program, actually, this relationship building with a community organization whose members are LGBT asylum seekers and refugees and who are often actually excluded from conversations around health and well-being and are quite forgotten.
0: 8 hafton tak har hafte shuraka Melbourne mein qudrati mahol mein milte the jahan wo baghbani karte, bahar khana khate, parindon ka mushahida karte, sahil par ret par chalte aur saath baith kar gaur o fikr karte the. Bahut se shuraka ne kaha ki pehli baar unhe ehsaas hua wo kisi khaas jagah ka hissa hain.
15: The things that we would be measuring in the project were things like whether there is a reduction in loneliness, whether there is an improvement in connection to nature, and in both cases we saw some reduction.
0: ये एक किस्म का समाजी नुस्खा या दवा है जो इस ख्याल पर मबनी है कि सेहत पर समाजी और माहौलियाती अवामिल का असर होता है, ना सिर्फ तिब्बी अवामिल के। कुदरती मनाजिर का इस्तेमाल ना सिर्फ मुलाकात के मकाम के तौर पर होता था बल्कि ऐसी जगह थी जहाँ शुरका को बगैर सवाल या तनकीद के महफूज होने का एहसास होता और जहाँ वो बगैर किसी दबाव के दूसरे लोगों से ताल्लुक बना सकते थे।
15: Currently, this is a growing evidence-based approach, nature-based social prescribing, and we are hoping that with our research we are adding to it. Based on the participants' feedback about particularly what elements of nature are helping, it serves as a neutral, non-judgmental ground to connect. It's rewarding and reassuring that this is working, and we as researchers we're trying to see how we can continue working in this field and expand it to different communities.
13: With nature program, it is a gentle way for me to meet people and connected with the community. So nature is healing. We've been there together and that's why like I choose to be in nature. I feel calm, I feel peace and connection to the community.
0: SBS Examines की किस्त ओलिविया डी ओरियो ने तैयार की जो SBS उर्दू के लिए पेश की है वर्दा वकार ने। मजीद मालूमात के लिए sbs.com.au/sbsexamines पर जाइए।
12: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
0: सामईन नशरियात में शामिल करते हैं एक और गीत, सुनते हैं और का तुम।

0: जी सामईन, इसके साथ ही नशरियात में वक्त हुआ है कि हम लें तीसरा और आखिरी वक्फा, लेकिन जब हम आप वापस आएंगे तो आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे सुहेल समीर की, जो एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकार हैं। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। सामईन खुशामदेद, मैं हूँ आपकी मेज़बान वरदा वक़ार और ये नशरियात आप सुन रहे हैं SBS साउथ एशियन पर, और ये SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात है। सामईन, नशरियात के इस हिस्से में कुछ बात करते हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। सुहेल समीर का नाम पाकिस्तान शोबिस के वर्सटाइल अदाकारों में सरे फहरिस्त है। तकरीबन दो दहाई कबल मॉडलिंग से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिर अदाकारी की जानिब आए। अब तक मुतअद्दिद ड्रामों और फिल्मों में मज़ाहिया, संजीदा और मनफी हर किस्म के किरदार अदा कर चुके हैं। SBS उर्दू के साथ सुहेल समीर ने पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों की कहानियों और उनके किरदारों पर बात की है। उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आप सुनेंगे इस पॉडकास्ट में, जबकि मुकम्मल गुफ्तगू आप SBS उर्दू की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं और SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर भी। तो आइए मिलकर सुनते हैं कि क्या गुफ्तगू की है सुहेल समीर ने SBS उर्दू से।
7: यकीनी बनाइए कि आपको सिर्फ वो खबरें ना मिलें जो सोशल मीडिया फीड आप तक पहुंचाना चाहता है, बल्कि आपको खबरों के हर जाविये का इल्म हो। हमारी तमाम खबरें और कहानियां जानने के लिए आज ही अपने वेब ब्राउजर पर SBS उर्दू की वेबसाइट को बुकमार्क करें, sbs.com.au/urdu। आप SBS उर्दू के साथ हैं।
8: SBS उर्दू के लिए मैं हूँ कौकब जहाँ, और सितारों की दुनिया में आज हमारे मेहमान हैं सुहेल समीर।
9: शुक्रिया सुहेल समीर साहब, आपने SBS के लिए वक्त निकाला और हम इस वक्त आपकी शूट पर मौजूद हैं। तो ये आप किस ड्रामे की शूट कर रहे हैं?
10: इस वक्त हम हैं राहगुजर की शूट पर, और अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया। और मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के आपने किए हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं भी सेलिब्रिटी।
9: नहीं नहीं आप बिल्कुल सेलिब्रिटी हैं, और बिल्कुल हैं, और अच्छा नाम है, और बहुत टैलेंटेड आप सेलिब्रिटी हैं हमारे।
10: थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे रिमार्क्स मेरे लिए पास किए। मैं वैसे अभी जिस वक्त और दौर से गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि खुद को एग्जिस्ट करवाना बहुत मुश्किल काम है
9: जी।
10: तो जब ऐसे लफ्ज सुनने को मिलते हैं तो अच्छा लगता है।
9: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अच्छा ये बताएं सुहेल, आप काम कर रहे थे, लेकिन वो होता है ना कि एक टैलेंट को एक मौका चाहिए होता है निकल के आने का, तो आप हमारे ख्याल में सुनो चंदा जो था, जिसमें आपका एक रोल जो था वो ऐसा था कि वो एक टॉक ऑफ द टाउन, वो पूरा ड्रामा हो जा रहा है उसमें हर किरदार, उसमें आपका करेक्टर भी एक टॉक ऑफ टाउन बन गया, और आप जो है वो ब्रेक कह सकते हैं, तो आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से?
10: बिल्कुल भी नहीं।
9: अच्छा
10: मुझे ऑलमोस्ट कोई 20 साल तो हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए. एज अ सुपर मॉडल मैंने बहुत सारी कैंपेन्स की.
9: अच्छा.
10: बहुत सारे जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स के लिए मैंने मॉडलिंग की. तो नाम और रिकग्निशन मुझे मेरा ख्याल बहुत साल पहले मिल चुकी हुई थी. हाँ, एज एन एक्टर मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी शायद. तो वो आपकी बात मैं सेकंड करूँगा कि शायद सुनो चंदा के बाद. लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी सारे प्लेस किए, लेकिन मेरा ज़्यादा काम जो है वो PTV ATV के लिए ज़्यादा काम किया मैंने. सोनो चंदा और इस तरह के जितने भी सीरियल, उसके बाद में हम TV, जियो और ARY के लिए काम मुझे मिलना शुरू हुआ. लेकिन उससे पहले मैंने ज़्यादा काम उन चैनल्स के लिए किया और बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट थे, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स थे जिनसे मैंने अपनी पहचान मेरी बनी. लेकिन सोनो चंदा के बाद शायद मुझे लगता है कि ये जो है वो ज़्यादा ग्राफ बन गया कि लोग मुझे रिकग्नाइज करना शुरू हो गया एज एन एक्टर. लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी सारे सीरियल जो है वो एज अ हीरो भी किए और ऑलमोस्ट
9: आपका प्रोफाइल
10: काफ़ी सारी जो है वो हीरोइंस जो है उनके साथ काम किया मैंने. तो ठीक है, मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए. तो ठीक है, सही है. अगर लोग मुझे अब रिकग्नाइज करते हैं एज एन एक्टर, तो एक मॉडल पर ना एक छाप होती है कि शायद ये एक्टिंग नहीं कर सकता. तो उसको ब्रेक करने के लिए मैंने मेरा ख्याल है कि अपने डिफरेंट कैरेक्टर को हीरोइज्म से निकल के एज अ फादर एक कैरेक्टर प्ले किया. लेकिन उसकी बात मेरी बदकिस्मती ही है कि उसके बाद से मैं इस छाप को हटा नहीं सका. हालांकि बीच में मैंने एक और सीरियल किया था, खुदा और मोहब्बत. तो लेकिन वो हीरोइज्म से मैं निकल गया और कैरेक्टर एक्टर्स जो है ना वो एज अ बन के रह गया. लेकिन ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. लोग मुझे रिकग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा है.
9: ठीक है. अच्छा, आपने जो है वो फिल्म्स भी की, तो फिल्मों की तरफ क्या हुआ, दोबारा जाना नहीं हुआ, या आपको लगता है कि इंडस्ट्री अभी और ज्यादा ग्रो, जो हम अभी बात कर रहे थे ग्रो करना इंडस्ट्री का, तो वो उसका इंतजार कुछ कर रहे हैं?
10: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जिस टाइम पे मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था, तो तब फिल्म इंडस्ट्री डिक्लाइन की तरफ थी.
9: अच्छा.
10: तो फिल्में उस तरह से बन नहीं रही थी. फिर कुछ फिल्में बनी और कुछ अच्छी फिल्मों का मैं पार्ट भी रहा, जैसे कि ज्वाइलैंड मैंने की, वक्री मैंने की और साया खुदाए ज़ुलजलाल फिल्म मैंने की. तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी फिल्म, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाह रहा था. और अभी रिसेंट टाइम के ऊपर मेरा ख्याल है कि मैंने इतना करेक्टर जो है इस तरह के करेक्टर्स किए हैं कि शायद फिल्मों में उस तरह के रोल्स नहीं है मेरे लिए. वो ठीक है, कोई बात नहीं. लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं ज़रूर अवेल करता हूँ. और अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छा डायरेक्टर. मेरा ख्याल है कि फिल्म एक ऐसा मीडियम है पाकिस्तान में कि अगर आपने फिल्म में काम करना है तो अच्छे डायरेक्टर और अच्छी टीम के साथ आप काम करें तो वो फिर ज़रा बेहतर है. जैसे कि फिज़ा और नबील हैं या जैसे नदीम बेग साहब हैं. तो अगर इस तरह के डायरेक्टर्स के साथ आप काम करें. एक और मैंने फिल्म की थी रहबरा के नाम से, तो एहसन खान और उसमें आयशा थी. बट अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से रिकग्नाइज नहीं हो सका. मैंने काफ़ी उसमें गटअप वेटअप भी किया था. तो ठीक है, कोशिश यही है कि एक्चुअली एक वक्त था जब हम मेरी ये कोशिश थी कि कुछ अपने आप को मनमाना है. फिर एक वक्त आया कि तलाश होगी अच्छे काम की, यार अच्छा काम करना है. अब सिर्फ ये है कि काम करना है. अब अच्छे बुरे की शायद उस तरह से नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कैरेक्टर्स भी इसी तरह के ऑफर हो रहे होते हैं. फादर फिगर मेरी अपनी जो है, एज से थोड़े कम लोग हैं जिनके मैं एज अ फादर, इवन दो कि मैंने तो माहिरा खान के फादर का भी कैरेक्टर प्ले किया है. तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगर उसको भी मैं जस्टिफाई कर सका हूँ, अगर मैंने किया और ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया है. मुझे एक जुमला बहुत सुनने को मिलता है, अंडर रेट. मैं उस तरह से नहीं हूँ जिस तरह से मुझे होना चाहिए था. लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब स्क्रीन से गायब हो गए हैं. तो मेरे ख्याल है कि वक्त के साथ साथ खुद को बदलना चाहिए. तो जो है जैसा है, आई एम हैप्पी विद इट.
9: तो आर यू वेटिंग फॉर, आपका कोई ड्रीम रोल है कि आपको ये किरदार करना है इतने अदाकारी के तजुर्बे के बाद? और फिर वही जो लोग कहते हैं कि आपको एक अंडर रेटेड है, आपके अंदर हमें भी लगता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है और आप बहुत ज़्यादा करेक्टर आपको मिले तो उसको बहुत अच्छा परफॉर्म आगे लेके कर सकते हैं, तो आपका कोई ड्रीम रोल है?
10: मेरा ख्याल है कि मेरे लिए यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि जो लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं अंडर रेटेड हूँ और वही मेरे लिए ये बात कर रहे होते हैं कि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप हर तरह का करेक्टर जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बस ठीक है इंशाल्लाह। नहीं वैसे अगर मैं अगर ये बात करूँ कि मेरा कोई ड्रीम रोल है, वैसा ड्रीम रोल कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो रोल मुझे मिल रहा होता है मैं उसी में लिव करता हूँ और उसको ही बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। सुनो चंदा के बाद से लेकर आज तक मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत काम किया है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ करेक्टर्स की है, हर तरह का करेक्टर मैंने प्ले किया है। तो ठीक है कोई ना कोई एक ऐसा कोई करेक्टर मुझे मिलेगा जिससे शायद मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकूं और इंडस्ट्री या चैनल्स इस बात पर रिलाय कर सकेंगे मेरे में इतनी वो कैपेसिटी है कि मैं कोई मेन जो है वो टाइटल प्ले जो है वो उसको मैं क्राउड को पुल कर सकूं। तो लेट्स सी, मैं ना उम्मीद नहीं हूं और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर इस तरह के स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ भी अगर मैं मेन लीड के साथ रिकॉग्नाइज होता हूँ तो इससे बड़ी अल्लाह की करम नवाजी और कोई बात नहीं है।
9: समटाइम्स ये भी होता है कि सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और वो उसकी एक वाइब बन जाती है।
10: लेकिन वो उस तरह से नहीं होता। जो लाइमलाइट जो आपकी मेन लीड कास्ट को मिल रही होती है वो स्पोर्टिंग एक्टर को उस तरह से नहीं रिकॉग्निशन मिल रही होती। लोग एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इनिशिएटिव उस तरह से नहीं लिया जाता कि इस एक्टर को लेकर कोई कैरेक्टर लिखा जाए और उस पर जो है वो कोई
9: ये हमारी यहाँ रुझान में से बहुत कम
10: बहुत कम।
8: सितारों की दुनिया में आपने सुहेल समीर की बातें सुनी जिसकी वीडियो आप SBS उर्दू के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं।
11: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
0: जी सामईन, सुहेल समीर की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। तो यहाँ ये याद दिलाते चलें कि उनकी पूरी गुफ्तगू आप सुन सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर या फिर SBS उर्दू की वेबसाइट पर। यहाँ ये याद दहानी भी चलते चलते कराते चलें कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरक़ी वक्त के मुताबिक 3:00 पॉप देसी पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम बुध को ही SBS 2 पर 6:00 और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को 6:00 नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम SBS 2 पर शाम को सुन रहे हैं तो ये नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया गया है और कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। उसके अलावा SBS उर्दू मौजूद है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी। आप SBS उर्दू को तलाश कर सकते हैं। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के पॉडकास्ट अपनी पसंद के अवकात में सुनिए। आप हमें पैगामात भेज सकते हैं और हमें ये बता सकते हैं कि नशरियात में आपको क्या कुछ पसंद आया। आप हमसे ये भी तस्करा कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई मुनफरिद कहानी या मुनफरिद टैलेंट मौजूद है और आप वो दीगर सामईन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो किस तरह मुमकिन है। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि नशरियात में ऐसे कौन से मौजूआत हैं जिनका SBS उर्दू अहाता करे और वो कौन सी कहानियां हैं जो आपको पसंद आई हैं या उनसे मिलती जुलती कहानियाँ आप सुनना या पढ़ना चाहते हैं। सामईन, इसके साथ ही नशरियात का हो रहा है इख्तिताम। मेरी जानिब से फ़ी अमान अल्लाह, लेकिन जाते जाते जुमे के दिन की मुनासबत से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकु स्टूडियो का अल्लाहु अकबर। तो मेरी जानिब से खुदा हाफिज़। आप जाते जाते सुनिए अमानत अली और अहमद जहांजेब की आवाज़ में अल्लाहु अकबर।

दोस्तों अजकल एक वड्डी खबर फीफा वर्ल्ड कप भी बनिया होया। आओ फिर सुनदे हां साडे साथी पुनीत ढींगरा तो कि की कुछ चल रहा है फुटबॉल दी दुनिया विच।

0: मैच दे दूजे हाफ विच कमाल करन वाले हीरो हैरी केन अते यूरी टिलेमैंस ने शानदार प्रदर्शन करके इंग्लैंड अते बेल्जियम नू राउंड ऑफ 16 विच पहुंचा दिता। दूजे पासे संयुक्त राज अमरीका ने भी बोस्निया अते हर्जेगोविना ते जित दर्ज करके अगले दौर विच प्रवेश कर लिया है। मैं हां पुनीत टिंगरा अते है फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे 21वें दिन दा पूरा हाल। फीफा वर्ल्ड कप दे 21वें दिन दी शुरुआत अटलांटा तो हुई जिथे इंग्लैंड ने 7वें मिनट विच पछड़न तो बाद शानदार वापसी करदियां डीआर कोंगो नू 2-1 नाल हरा दिता। इंग्लैंड दी टीम मैच दे ज्यादातर समय दौरान अपनी लय लभण लई संघर्ष करदी नजर आई अते कोंगो दे बेहतरीन गोलकीपर ने वार-वार उन्हां दे हमलियां नू नाकाम कर दिता। थ्री लाइन्स यानी इंग्लैंड नू उस वेले वी निराशा हासिल हुई जदों रैफरी अते वीएआर ने पहले हाफ दे अंत तो थोड़ा पहला हैरी केन नू पेनल्टी बॉक्स विच डिगण ते कीती गई अपील नू रद्द कर दिता, पर आखिरकार ने मैच दे अंतम पलां विच 2 गोल करके इंग्लैंड नू राउंड ऑफ 16 विच पहुंचा दिता जिथे हुण उसदा मुकाबला इतिहासक एस्टेका स्टेडियम विच मैक्सिको नाल होवेगा। उधर सिएटल विच बेल्जियम ने शानदार वापसी करदियां सेनेगल नू 3-2 नाल हराया जिथे कप्तान यूरी टिलेमैंस ने 2 गोल कीते। 86वें मिनट तक सेनेगल 2-0 नाल अगे सी पर बेल्जियम ने वापसी करके मैच नू एक्स्ट्रा टाइम तक खिंच लिया। जदों मैच पेनल्टी शूटआउट वल वध रहा सी तां वीएआर दी लंबी समीख्या तो बाद टिलेमैंस ने पेनल्टी हासिल कीती अते 125वें मिनट विच इस नू बड़ी शांति नाल गोल विच बदल के टीम नू जित दवाई। हुण राउंड ऑफ 16 विच बेल्जियम दा सामना संयुक्त राज अमरीका नाल होवेगा। संयुक्त राज अमरीका ने बोस्निया अते हर्जेगोविना नू 2-0 नाल हरा के राउंड ऑफ 16 विच अपनी जगह पक्की कर ली है जो कि 2002 तो बाद वर्ल्ड कप दे नॉकआउट पड़ाव विच उसकी पहली जित है। हाफ टाइम तो ठीक पहला फ्लोरिन बालगुन ने पहला गोल करके टीम दा खाता खोलिया जिस तो बाद मलिक टिलमैन ने 82वें मिनट विच एक शानदार फ्री किक राही इस जित ते मोहर लगा दिती। हालांकि बाद विच बालगुन नू वीएआर दी समीख्या तो बाद रेड कार्ड दिखा के मैदान तो बाहर भेज दिता गया जिस कारण ओ हुण बेल्जियम खिलाफ अमरीका दे अगले मैच विच खेड नहीं पाउणगे। अते हुण रुक करदे आं सोकरूज़ वल। मिस्र यानी इजिप्ट खिलाफ शनिवार नूं होण वाले राउंड ऑफ 32 दे मुकाबले तो पहलां सोकरूज़ ने डैलस विच अपना पहला सिखलाई सैशन पूरा कर लिया है। सहायक कोच माइकल जडीनाग दा कहना है कि टीम दा पूरा ध्यान मिस्र दी पूरी टीम ते केंद्रित है, ना कि सिर्फ इस गल ते कि उहनां दे स्टार स्ट्राइकर मुहम्मद सोलाह अपनी हैमस्ट्रिंग दी सट तो समें सिर उभर पाउंदे ने या नहीं।
1: They have threats all over the park. That's what they do. They've got guys who are playing at a very high level, and you mentioned one who's done it for a very long time. There are others in there that

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: करण औजला दे या जो भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि तुहाड़ा करण औजला दे प्रति जो प्यार है उन्हों खासम खास बनांदी है इस सारियां चीज़ां भेजो जी SBS दे SBS पंजाबी दे ईमेल आईडी punjabi.program@sbs.com.au उत्ते ते जिहड़ी एंट्री सब तो ज़्यादा दिलचस्प होएगी उन्हों मिलेगा करण औजला दे मेलबर्न अते सिडनी दा जिहड़ा कॉन्सर्ट है उन्हां दियां मुफ्त टिकटां जे तुसीं भी जितना चाहुंदे हो फ्री टिकटां कुछ नहीं करना बस ईमेल उत्ते लिख के भेजना या फोटोआं वीडियो जिहड़े मर्जी मीडियम राहीं अपना प्यार जिहड़ा है वह जाहिर करना है जी ते दसना कि तुसीं करण औजला दे फैन क्यों हो। ईमेल आई डी फिर तो नोट कर लो punjabi@sbs.com.au punjabi.program@sbs.com.au उत्ते जदों तक तुसी ईमेल कर रहे हो मैं एक छोटा जा ब्रेक लेके हुणे ही वापस आई।
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: वक्वे तो बाद एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने SBS पंजाबी प्रोग्राम विच। दोस्तों इस नवे साल यानी कि इस नवे वित्तीय वरे या फाइनैंशियल ईयर की शुरुआत विच एक बड़ा वड्डा बदलाव किया गया है वीज़ा फीस विच। पहली जुलाई तो यानी कि नवे वित्तीय साल के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने लगभग सारी वीज़ा श्रेणियों के लिए फीस वधा दी है। विश्व भर में सब तो वध विद्यार्थी वीज़ा फीस होने तो बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर तो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लिए वीज़ा अर्जी की लागत विच वड्डा वाधा किया। इस साल के शुरू विच अस्थाई रेजिडेंसी भाव कि TR की फीस दुगनी करन तो बाद हुण 485 वीज़ा की फीस भी वधाई गई है। मापिया अते पार्टनर वीज़ा यानी कि फैमिली वीज़ा कैटेगरीज जिन्हां लई पहला ही सालां दी लंबी उड़ीक करनी पैंदी है इन्हां फैमिली कैटेगरीज़ विच भी हुण अर्जी फीस लगभग 25% वधी है। PR वीज़ा अर्जी अते हुनरमंद माइग्रेशन दी लागत विच भी वड्डा वाधा देखण नूं मिलिया। इस दे चलदे SBS पंजाबी दे नाल गल करदिआं वीज़ा माहर ट्रस्टेड इमीग्रेशन सर्विसिज़ तों गिन्नी कोचर ने दस्या कि फीस विच अचानक ही इन्ने वड्डे वाधे ने लोकां नूं हैरान कर दित्ता।
8: ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ

0: जी हाँ दोस्तों, जे तुहानू भी यह गाना या पंजाबी गाने पसंद ने ते तुहाडे लई SBS पंजाबी एक बहुत ही वधिया मौका लैके आ रहा है। करण औजला दा जिहड़ा ऑस्ट्रेलिया विच कॉन्सर्ट होण जा रहा है, सिडनी विच, मेलबर्न विच, वख वख कॉन्सर्ट दियां मुफ्त टिकटां SBS पंजाबी दे रहा है जी। पर इस कॉन्टेस्ट विच भाग लैण लई एक छोटे जे सवाल का जवाब देना है। सवाल है जी कि वॉट मेक्स यू द बिगेस्ट करण औजला फैन, कि जे तुसी करण औजला दे फैन हैगे हो तो अजिहा की है जो तुहाडा करण औजला दे लई जो प्यार है उन्हों खास बनाउंदा है। अपना अपने करण औजला दे लई फैंडम या प्यार का इजहार करते हुए कोई फोटो, वीडियो, लेख या कोई शायरी जिदा भी तुसी इजहार करना चाहो कर सकते हो जी। तो भेजो उस इजहार नू punjabi.program@sbs.com.au उत्ते ईमेल करके। जेड़े जवाब सब तो इंट्रस्टिंग होंगे उन्होंने मिलेंगे जी फ्री पास। ईमेल एक बार फिर तो सुन लो, punjabi.program@sbs.com.au। मिलते हैं जी ब्रेक दे उस पर।
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Your program will resume shortly.
7: SBS रेडियो ऐप नूं आज ही डाउनलोड करो ते अपने पसंदीदा प्रोग्रामां दा आनंद माणो। इस नूं ऐप स्टोर जां गूगल प्ले तों मुफ्त प्राप्त करो।

0: SBS पंजाबी दे हफ्तावार सेगमेंट अखान कहानी चे मैं हां मसूद मल्ली और आप सब दा बड़ा निका जिया स्वागत है। अखान कहानी चे मैं लै के उना आप सब दे रूबरू मंजे हुए जनाब एहसान बाजवा साहब जिन्हां दा काम उना दी एक जींदी जाग दी मिसाल है कि उन्होंने अखाणा नू किदां कुंजिया इकट्ठा कीता और फिर किताबी रूप दिता। सो वस्तार दे नाल अखाण दे उते लो पांदे ने अज भी साडे नाल ने एहसान बाजवा साहब जी आयां नू कहिंदे अज दी अखाण कहानी चे।
1: जी बड़ी मेहरबानी जनाब मल्ली साहब जी वास्ते रो स्वागत है तुहाडा जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। ते बाजवा साहब अज जेड़ा अखाण मेरे हथी लगा ओ ए है
1: जी जी
0: के पराए हथी बत्तियां दे 33 होने मुश्किल ने।
1: मैं अर्ज करना के पराए हथी वेखो ना कोई भी इस अखाण च सिख्या दिती गई है ए मत दिती गई है भी जेड़ा भी तुसी बिजनेस करदे हो जेड़ा वणज वटा करदे हो वणज व्यापार करदे हो कारोबार करदे हो बिजनेस करदे हो ओदे सिर दे उते तुहानू हर वेले खलो के रहना चाहिदा है और तुहाडियां अखां दे थले होना चाहिदा है क्योंकि जदों तुसी किसी दे हाथ च सारी खेड फड़ा दोगे ते ओ लोग जेड़े ने ओ कदी भी ओ मतलब बहुत घट लोग नौकर जेड़े हुंदे ने जेड़े पूरे आनेस्ट ईमानदार हुंदे ने ओ आंदे ने कि असी मतलब मालक नू एदी जेड़ी माया है उन्नू जाया ना करिए लेकिन बहुते जोड़े बेपरवाह हुंदे ने ते जदों वेखो ना ए जेड़ियां छोटियां छोटियां सेविंग्स ने ना निक्कियां निक्कियां
0: जी जी
1: और निक्कियां निक्कियां यूटिलिटीज एदे चो फायदा खट के ते फिर हौली हौली प्रॉफिट ते फिर एदे नाल बिजनेस बनदा है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: जदों बिजनेस छड़ ही किसे दे सिर ते दिता जाए ते ओ जनाब का उस बिजनेस दी बर्बादी हो जांदी है ते कदी भी 32 रुपईयां दे 33 रुपईये नहीं हुंदे। हालां वेखो ना बिजनेस दा ते मकसद ही ए वे बुनियादी के पैसा जेड़ा पैसा पैसे नू मतलब के उनू पैदा करे प्रोड्यूस करे और पैसे दे विचों तुहाडे एक्सपेंडिचर खर्च जमा मुनाफा लिंग थकावन दा की फायदा होया जी बिजनेस दे विच दिमाग खपाण दा। इस वास्ते किसे भी मैं जेड़ा वणज ओदा जेड़ा मोटिव हुंदा ओदा जेड़ा बंदे दी अरज हुंदी है ओ ए हुंदी है कि मैं पैसे नाल पैसा कमावां और पैसे नाल पैसा उदों ही कमाया जा सकदा जदों बंदा अपने काम दे उते हर वेले पूरियां अखां खोल के ते ध्यान नाल 24 घंटे उनूं ध्यान च रखे।
0: ठीक है।
1: ते जे ओ बेपरवाह हो जाए ते पराए हथां ते छड के नौकरां चाकरां ते छड के ते जनाब आप सैर सपटे करदा फिरे ते फिर ओदा वणज जेड़ा ओ खराब हो जांदा है ओ बर्बाद हो जांदा है ते बड़े बड़े असां वेखे ने के करोड़ां पति ते अरबां पति वी जेड़े ने ना इस तरह दे उहनां नूं वेसरे होण पारों ओ उजड़ जांदे ने और उहनां दे बिजनेस दे सिर्फ ओ कंधां दे बोर्ड ही लगे रह जांदे ने। इस वास्ते जरूरी ये है कि तुसीं कोई भी वणज करना भावें पाए पैसे दा करना है या तुसां करोड़ दा करना है 10 करोड़ दा करना है तुसी उस काम दे उते हर वेले तुहाडा ध्यान होना चाहीदा कि मेरी जिहड़ी इनपुट की है आउटपुट की है और आउटपुट दे विच मेरा मतलब एक्सपेंडिचर जिहड़ा ते अगे जिहड़ा एक्सपेंडिचर तो वध इनकम मेरी किन्नी है और वो इनकम जिन्नी वध होएगी ओनू विचों एक्सपेंडिचर कढ़ के बाकी उहदा प्रॉफिट होएगा ते वो प्रॉफिट इसे सूरत च आ सकदा है और प्रॉफिट ओनू मिलदा रहेगा तो उहदा काम अगे वधेगा।
0: बिल्कुल ठीक है। अपने सुनने वाले नूं दस्सदे जाइए साडा अज दा अखाण है पराए हथीं बत्तियां दे 33 होने मुश्किल ने। बाजवा साहब इहदे च इह वी दस्सिया गया है कि जदों तक किसे काम दा पूरा गुर ना जाणदे होवो उस हुनर तों पूरे वाकफ ना होवो इस आस ते कि फलाणा जिहड़ा उह ते इस काम दा माहर आ चलो उहदे नाल भाईवाली कीती है मैं इनवैसट करना है उहदे नाल भाईवाली करियां जां ओदी महारत तो फायदा चुकिया मैं नफा कमा लांगा है इस अखाण च यह इशारा भी कि यह भी बर्बादी का सबब बनता है।
1: कर वेखो जी पहली पहली गल ए कि बिजनेस जिहड़ा भी या कारोबार या वणज वटा करना है तुसी ओदे बारे च तुहानू पूरी जानकारी होनी चाहीदी है पूरी सिख्या होनी चाहीदी है और अगर सिख्या नहीं तो उदू पहला ओदे बारे च पूरी सिख्या लै के ते फिर ओदे ते पैसा इनवैसट करना चाहीदा
0: है।
1: इस वास्ते कि तुसी मतलब के ओदियां कई मतलब कमियां कुताइयां ऐसियां भी हुंदियां ने जिहड़ियां जारी पक्षों नजर नहीं आउंदियां ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਮਾ ਤਫੀਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਾਣ ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਪਾਰ ਨਾ ਅਪਣਾਓ।
1: ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਾਏ ਹੱਥਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਉਹਦੇ ਜੋ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋ ਪਾਈ ਉਹ ਸੀ ਪਰਾਏ ਹੱਥੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਤੀ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਖਲੋਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਜੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਜਵਾ
1: ਸਾਹਿਬ, ਖਾਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਗਾਨੀ ਹੱਥੀ ਤੇ ਗੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ।
0: ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਆਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ।
1: ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸੇ ਰਹੋ।
0: ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਂ ਮਸੂਦ ਮੱਲੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਾਣ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਾਣ ਸੀ ਪਰਾਏ ਹੱਥੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇਤੀ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
2: ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ SBS ਪੰਜਾਬੀ।

0: विच तरिया जांदा।
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
2: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
3: शुक्रवार 3 जुलाई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार। सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं। SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि वीजा संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, तो आज कार्यक्रम में इससे जुड़ी कुछ जानकारी रहेगी आपके लिए। भारत से रिपोर्ट तो कार्यक्रम का हिस्सा रहेगी ही और मुलाकात करेंगे एक वादक कलाकार के साथ में जो बजाते हैं एक अलग ही तरह का साज। तो साज की बात हुई है तो आइए मैं आपको एक धुन सुनवाती हूँ। आप इसमें से जो साज आपको सुनाई दे रहे हैं उनको तो ज़रा पहचानिए। तो अगर आपने इन साजों को पहचान लिया है तो बस इसी में से एक साज के वादक के साथ में आपकी मुलाकात करवाऊंगी। लेकिन ये दोनों कौन से साज हैं इसके बारे में आप मुझे अवश्य लिखें 0439-799-767 पर। और अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश। नमस्कार, शुक्रवार 3 जुलाई के लिए यह न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। न्यू साउथ वेल्स में पहली बार H5 बर्ड फ्लू का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। मिड नॉर्थ कोस्ट में हॉक्स नेस्ट के पास एक बीमार बहुत ही बड़ी पेट्रोल की सूचना आम लोगों ने दी। शुरुआती टेस्टिंग में H5 इन्फ्लुएंजा का परिणाम सकारात्मक आया और अब 500 से अधिक सर्विलेंस स्टाफ क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर तारा मोराटी का कहना है कि पैनिक में खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस समय पोल्ट्री इंडस्ट्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वेलेंजुएला में सिर्फ 38 सेकंड के अंतर में आए दो शक्तिशाली भयानक भूकंपों से मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 2600 यानी कम से कम 2595 हो गई है। लोगों ने सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि कई लोगों को अपने प्रियजनों की तलाश में नंगे हाथों से मलबा खोदना पड़ा। वहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्रेस ने अधिकारियों द्वारा देरी करने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग के चांसलर माइकल स्टिल ने ICAC जांच में सबूत देने से कुछ दिन पहले ही त्यागपत्र दे दिया है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली ये संस्था इस बात की जांच कर रही है कि क्या यूनिवर्सिटी का काम कंसल्टिंग फर्म्स को गलत तरीके से दिया गया था और क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई गड़बड़ी की गई थी। AFL के पूर्व खिलाड़ी निकी विनमार को उत्तरी विक्टोरिया में एक महिला पर हमला करने का दोषी पाया गया है। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली विनमार को 1993 के उनके नस्लवाद विरोधी स्टैंड के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जब उन्होंने भीड़ से नस्लीय दुर्व्यवहार के बाद अपना जंपर उठाया और स्किन की ओर इशारा किया था। कैनबरा में अफगानिस्तान की एम्बेसी बंद होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की अफगान कम्युनिटी तालिबान राज को किसी भी तरह की मान्यता देने के खिलाफ चेतावनी दे रही है। 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से एग्जाइल में काम करने के बाद एम्बेसी इस हफ्ते औपचारिक रूप से बंद हो गई। डीफैट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया तालिबान को मान्यता नहीं देता है और उनके अपॉइंटेड डिप्लोमेट्स को स्वीकार नहीं करेगा। कल बृहस्पतिवार को भारत और जापान ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, एडवांस टेक्नोलॉजी, मजबूत सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार इसके साथ ही आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक मजबूत संयुक्त संदेश भी दिया गया। नई दिल्ली में हुए 16वें भारत जापान सालाना शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने लंबी बातचीत की। इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा विकास, समृद्धि और मजबूती के लिए रणनीतिक तालमेल और भरोसे की साझेदारी को आगे बढ़ाना शीर्षक वाले एक संयुक्त बयान को जारी किया। और भारत में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी अब ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा रहे साधु संत चंपक राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर सवाल उठ रहे हैं। एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। एसआईटी अपनी पहली जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। अब एक बार फिर अयोध्या जाकर जमीन और आभूषणों की डिटेल खंगालने पर काम हो रहा है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद अब बात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के। उन्होंने अपने एक संबोधन में दशकों तक चल रही उस सरकारी व्यवस्था के लिए औपचारिक माफी मांगी है जिसके तहत हजारों अविवाहित माताओं को अपने बच्चों को गोद लेने के लिए मजबूर किया गया। क्या है ये पूरी बात और उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रही हैं नताशा कॉल।
4: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने औपचारिक रूप से उन हजारों महिलाओं से माफी मांगी है जिन्हें सरकारी नीतियों के तहत उनके नवजात बच्चों से अलग कर दिया गया था। ये विवादित व्यवस्था 1970 के दशक तक जारी रही। ये बात उन्होंने संसद में दिए गए अपने एक संबोधन में कही। इस व्यवस्था के तहत हजारों अविवाहित माताओं को अपने बच्चों को गोद देने के लिए मजबूर किया गया था। अनुमान के मुताबिक वर्ष 1949 और 1976 के बीच इंग्लैंड और वेल्स में अविवाहित माताओं के लगभग 1,85,000 बच्चों को गोद लिया गया था।
5: It was awful here. It really was awful. And it's lived with me all my life.
4: ये थी लिन रॉडन जिन्होंने पिछले साल बीबीसी से बात करते हुए अपना दर्द साझा किया था। वे ब्रिटेन के सेंट एग्नेस होम लौटी थी जहां दशकों पहले एक अविवाहित युवा मां के रूप में उन्हें अपना नवजात बच्चे को जबरन देने के लिए मजबूर किया गया था। ये जबरन गोद लेने की नीति ब्रिटेन सरकार द्वारा मुख्य रूप से 1949 से लेकर 1976 के बीच लागू की गई थी जिसमें कथित तौर पर चर्चों ने भी सहयोग किया था। और इसी साल की शुरुआत में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी सारा मलेरी ने भी इस मामले में चर्च की भूमिका के लिए माफी मांगी।
6: We are profoundly sorry for the pain, trauma and stigma experienced and still carried today by many people as a result of historical adoption practices in homes linked to the Church of England.
4: चार साल पहले ब्रिटेन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि अविवाहित माताओं और उनके बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहने के लिए आखिरकार ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेदार थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस सप्ताह उन कुछ माताओं और बच्चों से मुलाकात की जो इस जबरन गोद लेने की नीति से प्रभावित हुए थे।
7: But I just wanted to take the opportunity to see you personally, face to face, to make that apology as well.
4: और बाद में दिन में उन्होंने सरकार की ओर से औपचारिक रूप से माफी भी मांगी।
8: The shame is not yours. The shame was never yours. The shame is ours. And I say that on behalf of the whole country. I say it to every single person impacted. We are deeply and profoundly sorry.
4: माफी के साथ साथ कियर स्टार्मर ने इस नीति से प्रभावित माताओं और बच्चों के लिए कई सहायता उपायों की घोषणा भी की। इनमें गोद लेने से जुड़े रिकॉर्ड तक बेहतर पहुंच और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये संसाधन इसलिए जरूरी है क्योंकि जबरन गोद लेने की इस नीति के प्रभाव आज भी कई परिवारों के जीवन में गहराई से महसूस किए जा रहे हैं।
8: Those who grew up believing that they were unwanted, some of whom were even told directly that they were second class. To those who've carried a burden of loss, confusion and stigma, or who experienced neglect and abuse without the protection or oversight that should have been their right. To those who've experienced lifelong uncertainty, loss, or questions about identity and belonging, or whose mental and physical health, relationships, and sense of self across their lives has been affected. To the fathers who are denied a voice, excluded from decisions, or separated from their children. To the siblings, grandparents, partners, and extended family, and future generations who've lived with the consequences of these practices. To those who experienced harm from these practices, even while being brought up in loving homes by their adoptive parents. To those who are adopted across borders or cultures, who lost connections to their heritage, racial and personal identity. And to those from ethnic minority backgrounds who experienced racism or were treated differently within these systems.
4: Britain उन कई देशों में शामिल हैं जो अब अतीत की उन सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक प्रथाओं और सरकारी नीतियों पर आत्ममंथन कर रहा है, जिनके चलते अविवाहित माताओं को सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गर्भ अवस्था के दौरान उन्हें संस्थाओं में रखा गया और बाद में उनके बच्चों को विवाहित दंपतियों को गोद दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की सरकारें भी ऐसी ही नीतियों के लिए पहले ही औपचारिक माफी मांग चुकी हैं। वहीं नेदरलैंड्स में भी इस सप्ताह डच कैबिनेट ने 1950 से लेकर 1980 के दशक के बीच लागू रही जबरन अलगाव और गोद लेने की नीतियों के लिए आधिकारिक माफी जारी की है। ब्रिटेन में इस नीति से प्रभावित एक मां ने स्काई न्यूज से कहा कि सरकार की यह माफी उनके लिए एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक क्षण है।
9: I am so proud of today. We have waited for this day for so long. It means the world to us.
4: SBS न्यूज से डेबरा गुरारके की

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
3: मुझे लगता है कि आपने दोनों ही वाद्यों को बिल्कुल पहचान ही लिया होगा, तो बस आपको क्या करना है, आपने मुझे उन दोनों वाद्यों के नाम लिख भेजने हैं। आसान सा सवाल है, आप अपने इस सवाल का जवाब भेजें और मैं मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
5: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
5: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे कि जो अभी वीज़ा में जो बदलाव आए हैं, वीज़ा संबंधित आपने सुना ही होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आज, यानी जो नई सार्वजनिक सूचना है उसके अनुसार जो वो सेवाएं हैं वो 1 जुलाई से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। तो क्या है ये पूरी खबर और क्या कुछ और हमें जानना चाहिए, इसके बारे में कार्यक्रम में आगे मैं बात करूंगी ही। और आपकी एक मुलाकात भी है कार्यक्रम में एक कलाकार के साथ जो बजाते हैं एक साज। और अगर कार्यक्रम में आप बस अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, तो एक धुन मैंने आपको इस अंतराल से पहले सुनवाई थी, उसको मैं आपको दोबारा सुनवा देती हूँ और आप ज़रा पहचानिए तो कि ये कौन से वाद्य बज रहे हैं। तो आपने इन वाद्यों को तो पहचान ही लिया होगा, तो बस आपने अपने जवाब मुझे लिख भेजने हैं 0439799767 पर। और अभी भारत से हमारे संवाददाता विश्वरतन के साथ ये रिपोर्ट।
8: भारत और जापान ने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की है। भारत दौरे पर आई जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकायची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुरुवार को शिखर वार्ता हुई। इस दौरान आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया।
9: Today's engagements have yielded several substantial outcomes, broadly falling under three crucial areas, and I'll take you through them very briefly. These areas are economic security, energy resilience, and technology and innovation. It is significant that many of the outcomes that were finalized during the course of this summit fall in the area of economic security, whether it's the memorandum of cooperation in the field of batteries, or pharmaceuticals, including

0: including APIs and KSMs, or technical collaboration for resource exploration and mapping of critical minerals. The second major area of discussions today was energy resilience.
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए मिलकर काम करने को लेकर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की है। दोनों नेताओं की बातचीत का ब्यौरा देते हुए विक्रम मिस्त्री कहते हैं,
0: Both leaders acknowledge the role that our special strategic and global partnership plays insofar as peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific and even beyond is concerned.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास में जापान की भूमिका की सराहना की है। प्रधानमंत्री तकाइची के साथ शिखर वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
2: पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं।
1: इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए मिलकर काम करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लाने की तैयारी चल रही है। राज्य की भाजपा सरकार विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने वाली है। भाजपा लंबे समय से सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की वकालत करती आई है। हालांकि पहले प्रस्तावित कानून के मसौदे की समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसे 4 हफ्ते का समय दिया गया है। राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पाल ने इस बारे में बताया,
3: 4 हफ्ता के लिए हमारे ऑनरेबल जस्टिस देसाई जी को दिए हैं और वो 4 हफ्ता वो देखेंगे और फिर वो वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रखा जाएगा, टेबल किया जाएगा।
1: यूसीसी विधेयक का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस इन दिनों आंतरिक गुटबाजी और विघटन के कगार पर है। 2/3 सांसदों का गुट पहले ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी का साथ छोड़ चुका है। वहीं ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाला गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहा है। ज्यादातर विधायक बागी गुट के साथ ही हैं। पार्टी पर किसका दावा ज्यादा मजबूत है, इसका फैसला अब चुनाव आयोग करेगा। आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी यानी दोनों गुटों को नोटिस जारी किया है। 6 जुलाई यानी सोमवार तक इन्हें अपने दावे के समर्थन में जवाब आयोग को पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल के बाद अब चर्चा उत्तर प्रदेश की, जहां अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा फिर से गर्माता जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर दान एवं चढ़ावे में हेरा फेरी करने का आरोप लग रहा है। चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद SIT जांच में कुछ खुलासे हुए हैं। अब तक किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ का आरोप भाजपा RSS पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस नेता प्रवीण पाठक ने इस बारे में कहा,
4: स्वप्न बहुत सुंदर होते हैं लेकिन क्षण में मिट जाते हैं। जैसे क्षण भंगुर है जीवन, वैसे ही सपने होते हैं। स्वप्न देखना है तो देखो, लेकिन सोच समझ कर देखो। सपने बड़े क्रूर होते हैं, सपने सदा चूर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को, इस देश के धर्म प्रेमियों को जो सपने दिखाए हैं, वो एक एक करके सारे सपने टूटते जा रहे हैं, चूर होते जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि जो राम को लाने की बात करते थे, बड़ा आश्चर्य होता है कि वो राम भगवान के यहाँ जो चंदा चोरी हुआ, जो चढ़ावा चोरी हुआ, उसको भी आज आपके समक्ष वापस नहीं लेके आ पा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए प्रवीण पाठक कहते हैं,
4: जब हर बात का श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं, बड़े अग्रसर रहते हैं, आतुर रहते हैं, तो इस पर भी उनको संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
1: भाजपा लगातार निष्पक्ष जांच की बात दोहरा रही है। पार्टी का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में इस पूरे मामले पर चर्चा होगी। विवाद के केंद्र में रहे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इस बैठक के दौरान इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
5: श्रोताओं, भारत से आपने ये रिपोर्ट सुनी और अब समय हुआ है एक अंतराल का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके संदेश ना आए। आप अपने संदेश मुझे भेजते रहिए।
6: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
12: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
13: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
5: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपको एक झलक सुनवाई थी तो हमारे श्रोता ब्रजेश जी ने उस धुन को सुनकर अपना सही जवाब तो लिख भेजा है और हमारे एक श्रोता उसे दोबारा सुनना चाहते हैं, तो लीजिए आप सबके लिए उसकी झलक एक बार फिर सुनवा रही हूँ।
14: हाँ,
5: जी, तो मुझे लगता है कि आपने अब तो इन दोनों ही वाद्यों को पहचान भी लिया होगा, तो अपना जवाब आप मुझे लिख भेजिए 04397997667 पर, और कार्यक्रम में आगे आपकी मुलाकात करवाऊंगी ही उस कलाकार से जो उनमें से एक वाद्य को बजाते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में VFS ग्लोबल और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से जुड़ी काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को लेकर जो महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं। अब नई सार्वजनिक सूचना के अनुसार ये सेवाएं 1 जुलाई 2026 से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन इस दौरान आवेदकों की सहायता के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं और समर्थन सेवाएं तो जारी रखी गई हैं। क्या है वो और ये क्या है पूरी चीज़ जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है जानना, तो सुनिए ये रिपोर्ट, प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन।
14: VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी जानकारी के अनुसार कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया की सार्वजनिक सूचना के तहत ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर, पासपोर्ट एंड वीजा यानी CPV सेवाएं 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। नोटिस में ये भी उल्लेख किया गया है कि ये अस्थायी रुकावट विशेष रूप से उन आवेदकों के लिए असुविधा और अनिश्चितता का कारण बन सकती है जिन्हें तत्काल यात्रा या काउंसलर सेवाओं की आवश्यकता है। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। लगभग 8 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के रितेश जी, जो अब एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और भारतीय समुदाय के बीच काफी सक्रिय रहते हैं, स्थिति पर अपनी राय हमारे साथ साझा करते हैं।
15: It's bad के इस तरह से जुलाई का महीना है जब स्कूल हॉलीडेज है, पिक सीजन है, फैमिली ट्रैवल करेंगी और इस टाइम में ये इश्यू हुआ है। अभी इसमें क्या हुआ है कि पासपोर्ट रिन्यूअल से बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स के वो रुके हुए हैं, OCI कार्ड जिनको प्रोसेस कराने हैं वो उनको दिक्कतें आ रही है, पुलिस क्लियरेंसेस अटके हुए हैं, प्लस अटेस्टेशन सर्विसेज पे दिक्कतें आ रही है। और ट्रैवल का मैं इसलिए बोला कि ऑलरेडी ई वीजा अलाउ किया है हाई कमीशन ने, बट फिर भी लोग आज परेशान है कि भाई कुछ लोग हैं उनको भी कि अब करें तो क्या करें, हम के किसी का कुछ OCI का कुछ काम अटका हुआ था, ओवरऑल केओस, तो काफी पैनिक का माहौल है, इतनी दिक्कतें मतलब हो रही है। एंड इट्स लाइक यू नो, मैं एक चीज और एक बताना चाहता हूँ, कुछ मुझे मेरे एक परम मित्र है, उन्होंने ये बताया, उन्होंने याद दिलाई सुषमा जी की, ये सुषमा जी ने सिचुएशन इतनी सुधार दी थी, उन्होंने जब सुधार लाए थे देन इट वाज क्वाइट वेलकम चेंज। इनफैक्ट मेरा पासपोर्ट इतना जल्दी आ गया था, मेरा उस टाइम इंडियन पासपोर्ट होल्डर था मैं, और रिन्यू करके इतना जल्दी आ गया कि मेरे वर्क कलीग थे जो लोकल ऑस्ट्रेलियन, वो भी सरप्राइज होकर बोलते यार गजब है, मतलब इंडिया इतना तरक्की कर गया कि इतना जल्दी तुम्हारा पासपोर्ट आ गया और हमें तो बहुत दिक्कत आ रही है। और मेरा जो कमेंट था, फिर मैंने देखे जो अच्छा काम है उसको उसकी सराहना भी करनी चाहिए, तो मैंने एक कमेंट मैंने किया था कुछ सोशल मीडिया में, और वो कमेंट हमारे जो प्रधानमंत्री उनके पोर्टल में चला गया था कि देखो ये NRI है और ये हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कहने के लिए कि उसके बाद जो स्पेशली कुछ समय से जो सिचुएशन है इतनी खराब हो रही है, और वी हैव एक्चुअली गॉन बैकवर्ड्स, वे बैकवर्ड्स, और अब तो ये मतलब बिल्कुल ही बैठ ही गया है, तो इट्स वेरी सैड।
14: वो आगे डायस्पोरा के बीच फैली निराशा और असमंजस की भावना जाहिर करते हैं, खासकर ऐसे समय में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं।
15: डायस्पोरा जो है हमारा इंडियन डायस्पोरा, ये बाहर रह के भी जो देश के लिए जो प्यार है हमें, वो इंडिया को सपोर्ट करता है, और ये देखा जाता है कि अभी मोदी जी आने वाले हैं, इसके लिए बड़े बड़ी तैयारियां हो रही है, प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जा रहे हैं, रेडी हो रहा है, लोग बड़े उत्साहित है जाने के लिए उस प्रोग्राम्स में। एंड देन सडनली कम्युनिटी को ये भी जब पता चल रहा है कि भाई ये हमें अभी वीजा का इश्यूज आने लगा है, तो दे आर क्वाइट वरिड, भाई क्या होगा, चल क्या रहा है, मतलब व्हाट इज देयर, क्या हमारे काम रुके हुए सारे।
14: शेरो शायरी का शौक रखने वाले रितेश जी ने अपने विचार कुछ इस अंदाज में भी बयां किए हैं।
15: सरहदों के पार भी धड़कते हैं कई दिल तेरे लिए ए हिंदुस्तान, सिर्फ कागजों का मोहताज ना रह जाए अरमा हमारे ए हिंदुस्तान, मुश्किलों में हाथ थाम लेने का वादा किया था सुषमा जी ने कभी, मुश्किलों में हाथ थामने का वादा किया था सुषमा जी ने कभी, दूर सही पर हम भी तेरे बच्चे हैं ए हिंदुस्तान।
14: हाल ही में मई के महीने में मेलबर्न में नए कौंसल जनरल अनीश रंजन ने भारतीय मीडिया के पत्रकारों के साथ एक छोटी सी बैठक की। इसे कवर करने के लिए SBS हिंदी टीम की तरफ से नताशा कॉल भी वहां मौजूद थीं। इस दौरान कौंसल जनरल ने भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की, जिनमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI से जुड़े विषय भी शामिल थे। VFS कार्यालयों में OCI और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने में लंबी प्रतीक्षा को स्वीकार करते हुए अनीश रंजन ने यह भी साझा किया कि इस समस्या के समाधान और प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कार्यालय किस तरह काम कर रहा है। उन्होंने मेलबर्न के VFS सेंटर में दी जाने वाली सेवाओं को लेकर कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं इस बारे में भी बताया।
16: तो ये एक खुशखबरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि VFS सेंटर जो अभी स्वैनसन स्ट्रीट में फंक्शन कर रहा है, उस ऑफिस को हम चेंज कर रहे हैं और नया VFS का ऑफिस उसका इनॉग्रेशन होगा सेंट किल्डा रोड में अगले 5-6 हफ्तों में। तो उसके बाद क्योंकि नए बिल्डिंग में 15-16 काउंटर्स हो सकता है, तो उससे ज़्यादा हम सर्विस दे पाएंगे। और अभी जो अपॉइंटमेंट साइकिल का प्रॉब्लम, अपॉइंटमेंट साइकिल मीन्स जितने टाइम में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आज अगर मैं एक पासपोर्ट या OCI कार्ड या वीसा के लिए अप्लाई करता हूँ, अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट जब मिलेगा उस डेट को हम अपॉइंटमेंट साइकिल बोलते हैं 4 वीक्स, विच मीन्स आपको फर्स्ट पासपोर्ट अपॉइंटमेंट मिलता है 4 वीक्स के बाद। तो वो कम होगा क्योंकि ज़्यादा काउंटर होगा और काउंटर में VFS स्टाफ बैठेगा, और उस वजह से आई थिंक काफ़ी जो अपॉइंटमेंट साइकिल लंबी चल रहा है पासपोर्ट PCC और OCI और अदर सर्विसेज का, वो तो बहुत कम हो जाएगा। एंड वी विल सी की और किस किस तरह इस सर्विस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक साल पहले जिस एफिशिएंसी के साथ कौंसलर सर्विसेज यहाँ पे होता था, उस स्पीड, उस रफ्तार, उस एफिशिएंसी वापस लेकर आने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम आप सभी का सहयोग, फीडबैक और ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। एंड आई एम श्योर दैट वील गो बैक टू हैविंग एक्सेलेंट सर्विसेज which were being provided 1 year before.
17: आइए अब जानते हैं VFS Global की वेबसाइट पर जारी इस नोटिस में आवेदकों के लिए दी महत्वपूर्ण जानकारी। आपातकालीन काउंसलर सहायता की आवश्यकता वाले आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट देखें। जो पासपोर्ट कलेक्शन के लिए तैयार हैं, उन्हें मौजूदा पासपोर्ट रिटर्न प्रक्रिया के अनुसार VFS ग्लोबल द्वारा आवेदकों को वापस किया जाता रहेगा। जो आवेदन वर्तमान में प्रोसेसिंग में हैं, वे सेवाएं बहाल होने तक पेंडिंग रहेंगी। आवेदकों से अनुरोध है कि वह संबंधित अधिकारियों की ओर से आगे की अपडेट का इंतजार करें।
14: नोटिस में आगे ये भी जानकारी दी गई है कि वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स में टीमें कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाओं और निर्देशों के अनुसार आवेदकों को जानकारी और सलाह प्रदान करना जारी रखेंगी। VFS ग्लोबल इंडिया काउंसलर एप्लीकेशन सेंटर्स में सेवाएं तब फिर से शुरू होंगी जब उन्हें जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बहाल किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो ताज़ा जानकारी के लिए कैनबरा स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में स्थित विभिन्न काउंसलेट्स जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट्स को नियमित रूप से देखते रहें। सभी आवेदकों के धैर्य, समझ और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया है। ये भी कहा गया है कि VFS ग्लोबल इस अस्थायी अवधि के दौरान जहां तक संभव हो समय पर सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और जैसे ही अनुमति मिलेगी सेवाएं फिर से शुरू करने की आशा रखता है।
17: इस बीच आवेदकों की सहायता के लिए VFS ग्लोबल ने अपनी ग्राहक सहायता व्यवस्था यानी कस्टमर सपोर्ट अरेंजमेंट्स को और भी मजबूत किया है। आप कॉल सेंटर नंबर 03995638300 पर ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल इंक्वायरीज info.ind_aus@vfshelpline.com पर भेजी जा सकती हैं।
14: VFS, जिसका पूरा नाम वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज है, एक निजी कंपनी है जो कई सरकारों की ओर से प्रशासनिक सेवाएं संभालती है, जैसे वीजा आवेदन, पासपोर्ट नवीनीकरण, OCI दस्तावेजों का संग्रह और सत्यापन और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय काउंसलर सेवाओं के लिए अक्सर आवेदकों को OCI या पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए VFS ग्लोबल के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, जबकि अंतिम मंजूरी काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया या हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है। SBS हिंदी पे ये रिपोर्ट शैना कालरा के सहयोग से आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने।
5: तो श्रोताओं, आपने ये रिपोर्ट सुनी कि ऑस्ट्रेलिया में वीएफएस ग्लोबल और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया से जुड़ी जो काउंसलर पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं वो क्या हैं, और जैसा कि बताया कि कुछ असुविधाएं जो हो रही हैं वो अस्थायी रूप से ही हैं, उसके ऊपर काम चलेगा ही। और आगे बढ़ने से पहले आइए क्यों ना ये गाना सुनते चलें।

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Launch season 4, the Arctic.
8: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
9: It's a whole new frontier.
10: Oh my God!
8: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
11: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
12: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। हमारे श्रोता मनन जी ने अपना सही जवाब लिख भेजा है। उस जो मैंने साज की जो धुन की जो झलक सुनवाई थी उसके लिए। और हमारे श्रोता पीयूष जी का भी संदेश मिला है। पीयूष जी, आपका सुझाव और आपकी पसंद का गाना भी नोट कर लिया है। संभव अगर होगा तो आज ही, नहीं तो कल के कार्यक्रम में उसे हम शामिल कर सकेंगे। और जैसा कि मैंने वो जो झलक सुनवाई थी बताती चलूँ, जी हाँ, साज, सारंगी और तबला था। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, SBS पर मैं हूँ अनीता बरार। आइए आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ भारत में मशहूर मिश्रा परिवार के 8वीं पीढ़ी के सारंगी वादक संगीत मिश्रा जी के साथ, जो उत्तर भारतीय क्लासिकल संगीत की परंपराओं से गहराई से जुड़े एक जाने माने कलाकार हैं। शास्त्रीय संगीत की पुरानी परंपराओं और तकनीकी में आज के दौर के म्यूजिकल इनोवेशन को मिलाकर सारंगी म्यूजिक की दुनिया में उन्होंने एक खास पहचान बनाई है। हिंदी फिल्मों और सीरीज जैसे कि हीरा मंडी के गाने, फिल्म छावा का बैकग्राउंड स्कोर, रईस, केदारनाथ और कई एल्बम्स में उनकी बजाई सारंगी सुनाई देती है। सारंगी बजाते समय उंगलियों के पोर या नाखून नहीं बल्कि नाखूनों के क्यूटिकल्स तारों के किनारों पर दबाव डालते हैं, जिससे स्लाइडिंग माइक्रोटोन बनती है। खासा दर्द होता है बजाने में, शायद इसीलिए कहते हैं कि सारंगी बजाना बहुत मुश्किल होता है। बस यही सवाल संगीत जी से पूछा तो वो कहते हैं,
13: सारंगी इसलिए भी लोगों ने उसको एक ऐसे मुश्किल बोला कि सारंगी में ज्यादातर संगत हुई है, ज्यादातर संगत बजाते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप ओल्ड समय में देखिए, जो संगतकार होते थे उनको वैल्यू कम दिया जाता था। मेन आर्टिस्ट थोड़ा पेमेंट में भी, मतलब मैं खुल के बोल रहा हूँ, पेमेंट में भी 50% में भी 60% में भी ज्यादा लेते थे और एक छोटा अमाउंट संगतकार को देते थे। तो संगत करने वालों को काम तो उतना ही है जितना कोई गायक गा रहा है, हम साथ में सेम तो सेम बजा रहे हैं, मुश्किल काम है वो जी। लेकिन पेमेंट कम मिलता तो इसलिए भी एक लोगों ने बना दिया बहुत मुश्किल है
14: जी। सारंगी संगत पहले संगत का बात है, तो चाहे वो स्टेज के बिल्कुल पीछे बैठे होते थे लेकिन जब गायक गाते गाते रुकता इससे तो सारंगी सुरों को पकड़ के उसको अजस्त, तो गायकी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण और उभर के आता है।
13: क्योंकि ना सारंगी ही गायन के साथ ही संगत के लिए बना था, उसमें पूरी गायकी ही बसती है।
14: तो जब आप किसी के साथ संगत कर रहे हैं तो गायक के शब्दों को भी ध्यान में रखना होता होगा आपको?
13: नहीं, गायक के शब्दों को नहीं, गायक के शब्द के पीछे स्वर क्या लग रहे हैं, वो स्वर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो कोई तो शब्द यूज कर रहा है ऑडियंस के लिए, बट उस हर शब्द के पीछे में एक स्वर होता है ना, हम उस स्वर को फॉलो करते हैं। तो बट वो इतना क्विक होता है कि गायक गा रहा है और विद इन अ सेकंड के अंदर वो सेम चीज बजता चलता, साथ साथ बजता रहता है
14: जी। एक लंबे समय तक सारंगी बड़े दर्द भरे सुरों के लिए जानी जाती थी
13: जी।
14: आपने रेडियो खोला, सारंगी की आवाज सुनाई थी तो लगता है कि कहीं कुछ हो चुका है, वो शोक धुन के साथ में जुड़ गई थी। लेकिन अब सारंगी उससे बाहर निकल आई है, तो ये ट्रांजिशन आप कैसे बताएंगे?
13: देखिए, सारंगी को ना बहुत, सारंगी और सारंगी प्लेयर को बहुत दबाया गया पहले, ऐसा मुझे लगता है। तो आप देखिए, सारंगी या तो कोठा, बॉलीवुड की वजह से कोठे का सीन है तो सारंगी दिखा दिया
14: जी,
13: और कोई बड़ा कोई गुजर गया तो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन पे सारंगी बजा दिया, वो भी विदाउट रिदम। तो दिमाग में वो बैठ गया कि नहीं, सारंगी मतलब बस दुखी ही है। पर ऐसा नहीं, सारंगी का पुराना नाम सौरंगी है, उसमें 100 डिफरेंट इमोशंस निकलते हैं। तो आप जब राजस्थान देखते हैं, पंजाब देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो हैप्पी, मतलब जो खुशी वाले गाने हैं उसमें भी सारंगी बज रहा है। राजस्थान में डांसिंग, जो डांस वाले कालबेलिया और ये सब डांसेस होते हैं, घूमर है, उसमें आप देखेंगे कि सारंगी बज रहा है
14: जी। बिल्कुल, आपने 100 रंगों वाली बात की है, बिल्कुल अनोखा साज है,
13: अलग अलग इमोशंस बेसिकली उसमें से
14: आता है, अनोखा है। और शायद इसलिए भी बहुत मुश्किल काम होता होगा उन 100 जो रंग है उनको कहीं पर बांध लेना, उनके मूड को समझ पाना। आप तो 8वीं पीढ़ी के सारंगी वादक हैं।
13: मैंने सारंगी शुरू किया 7 से 9, 8-9 साल की एज में सारंगी पकड़ी, छोटी सारंगी थी मेरी। लेकिन उसके पहले गाना सीखता था, मेरे ग्रैंडफादर थे, वो बच्चों को, सारे नेबर्स के बच्चों, मतलब 20-25 बच्चे जो भी जमा हो जाए सबको बैठा के सिखाते।
14: आपका तो नाम में ही संगीत था, तो अगर संगीत नहीं होता तो क्या होता?
13: कि मेरे बड़े भैया संदीप हो गए थे, मम्मी और पिताजी का नाम का कॉम्बिनेशन, पापा का नाम संतोष था और पिता मम्मी का नाम गीता, तो उन्होंने सोचा संगीता रखेंगे, लड़की चाहिए, पर मैं तो लड़का हो गया तो उन्होंने ए हटा दिया, लास्ट से संगीत हो गया।
14: तो संगीत हो गया और संगीत अपने आप आपके साथ में जुड़ ही गया और आप संगीत को आगे लेकर बढ़ ही गए हैं। तो किसका आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव आप कहना चाहेंगे कि पड़ा होगा?
13: देखिए, सारंगी बहुत सारे, मतलब मैं तो बहुत बाद में, मेरे दो जनरेशन पहले हमारे ग्रैंड फादर जो हुए, फिर पंडित नारायण दास मिश्रा जी, मतलब मेरे ग्रैंड फादर पंडित गोपाल जी मिश्रा जी ग्रैंड फादर, और फिर पंडित राम नारायण जी थे, सुल्तान खान साहब थे, उस्ताद सुल्तान खान साहब, इन सारे लोगों ने, वो जो एक समय था आज से 30-40 ईयर बैक, उन्होंने तभी से सोलो चालू कर दिया। मतलब संगत तो करते ही थे लेकिन उन्होंने सोलो ज्यादा ज्यादा परफॉर्म करने लगे, तो उससे क्या हो गया कि फिर लोगों में थोड़ा सा सोलो सुनने की आदत, पहले आप देखिए पहले के महफिल जो होते थे शास्त्रीय संगीत की महफिल भारत में भी, सारंगी सोलो बहुत कम होता था
14: जी।
13: लेकिन ये लोग, बड़े बुजुर्ग गुरुओं ने ये इसको आगे बढ़ाया, अब उसका फायदा हमको मिल रहा है। अभी आप सिर्फ सोचिए कि जो संगत करते थे सिर्फ पहले के समय में
14: जी,
13: गाने के साथ, गाना सुनने के बाद जब ऑडियंस घर जाती तो क्या बोलते थे, खान साहब ने या पंडित जी ने क्या गाया, कितने लोगों का ध्यान जाता है कि तबला वादक बहुत अच्छा था या सारंगी वाला क्या बजा के गया, बहुत कम। बहुत समझदार होगा कोई तो सोचेगा कि यार अच्छा किया वो उसने भी, लेकिन जब आप सारंगी सोलो बजा के उठते हैं तो आपको याद करते हैं लोग, अरे वाह सारंगी पे क्या धुन बजाई,
14: क्या
13: तो सोलो होने से एक पहचान मिलता है।
14: आपके ऊपर आपके गुरु की कौन सी परंपरा या तकनीक का प्रभाव है?
13: मेरा जो घराना है, जैसे लोगों को पता होगा कि संगीत के घराने होते हैं, तो हम, मेरा घराना बनारस है, तो मेरे गुरुजी या फिर बोले बनारस घराना का एक स्पेशल ये है कि वहाँ सिर्फ ख्याल गायकी नहीं थी, ठुमरी दादरा ख्याल और इन सब का मिश्रण ध्रुपद धमार, ये हमारे स्वतंत्र वादन में आता है। जब मैं सोलो करता हूँ ये सारी चीजें उसमें आती हैं, गायकी और तंत्रकारी और ध्रुपद और ठुमरी, ये सारी चीजों का मिश्रण जो है वो बनारस घराना है।
14: और कभी कुछ ऐसा क्षण आया जो आपके लिए एक याददाश्त पल बन गया?
13: मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज, मतलब मेरे पिताजी मेरे गुरुजी थे
14: जी,
13: एक ही चीज बोला कि कभी कभी क्या होता था कि हम अब एज अ फ्रीलांसर बहुत मुश्किल भी कभी कभी आता है, कभी कभी ऐसे समय भी होते हैं कि कुछ काम नहीं होता है, पर तो मेरे पिताजी ने एक ही चीज बोला कि बेटा अगर काम नहीं है ना तो भी बैठ के रियाज करते रहो, क्योंकि जितना तुम कर्म करते रहोगे ना ये ऊपर कोई भी जो भी जिसको लोग मानते हैं वो सब देख रहा है, तो वो आपको आज नहीं कल ऐसा देगा। तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गया, तो फिर वो जब रियाज करना शुरू किया तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरा मुझे बहुत सारे काम और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी, जैसे रिसेंटली मैं अभी सऊदी अरब में गया तो मुझे 35 इंटरनेशनल म्यूजिशियन के साथ काम करने का मौका मिला और ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चांस, फिर मुझे संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला, युवा पुरस्कार। तो मतलब विश्वास के ऊपर है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें और गुरु भक्ति।
14: और अभी जो मॉडर्न म्यूजिक है, अभी कुछ समय पहले रॉक म्यूजिक में भी सारंगी सुनाई दी हमें, तो सारंगी का भविष्य आपको क्या दिखता है और युवा पीढ़ी के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
13: मुझे ऐसा लगता है ना कि एक्सप्लोर करना चाहिए अलग अलग जोन, अलग अलग जोन जोनर में जाके, क्योंकि अगर लोगों को हम सुनाएंगे नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा। आज भारत में ही बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ लोग आज मैं बजाने, तो सितार बहुत अच्छा बजाया आपने, उनको पता ही नहीं सारंगी क्या है।
14: हाँ।
13: अरे वाह वायलिन बड़ा अच्छा लगा आपका, नहीं पता, क्योंकि लोगों ने देखा ही नहीं है, भारतीय वाद्यों को देखा नहीं है।
14: तो उसका भविष्य कैसा दिखता है आपको?
13: भविष्य अच्छा है, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है।
14: हाँ।
13: क्योंकि हम लोग सारे लोग जो भी सारंगी वादक, क्योंकि सारंगी वादक बहुत लिमिटेड है, सारंगी के लिए काफी खुल गया है, मतलब वो गजल के साथ भी बजा सकता है, वो फ्यूजन के साथ भी बजाता है, वो जैज के साथ भी सोलो भी बजाता है, तबला सोलो के साथ संगत कर सकते हैं, कथक के साथ करते हैं। अभी मैंने भरतनाट्यम के साथ किया जो दक्षिण भारतीय डांस शैली है, जहाँ पे सारंगी तो कभी बजा ही नहीं। तो धीरे धीरे रास्ते तो खुल रहे हैं ना
14: जी।
13: बट हमारा काम क्या है, हमको जितना ज्यादा से ज्यादा सारंगी को लोगों के निगाह में, लोगों के दृष्टि में आएगा तो उसका फायदा मिलेगा और भविष्य अच्छा है।
14: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए चलते चलते क्या सलाह देंगे?
13: जिनको प्रोफेशन में आना है मैं बोलूंगा कि रियाज आपको अपने और अपने सास को समय देना पड़ेगा अलग से, और गुरु का बात फॉलो करिए। अगर आपको राज करना है अपने फील्ड में तो रियाज करें।
14: जी रियाज करें, राज करें, और वही सारंगी का भविष्य बनेगा।
13: बिल्कुल,
14: तो
13: बिल्कुल।
14: बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी दूंगी, और आपने समय निकाला हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भी है आपका।
13: धन्यवाद आपको। धन्यवाद।

सुरेंद्र जी, आपका संदेश भी मिला है। श्रोताओं, आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ। आपसे मुलाकात करूँगी कल के कार्यक्रम यानी शनिवार के कार्यक्रम में। आप सभी को अनीता बरारकर नमस्कार।

0: The Bollywood Session on SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: करती हाय।
1: YouTube पे करे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा।
2: अच्छा सुन, तेरी बातें टू मच है, पर लौंडे का स्वैग देसी टच है, तेरे यार का नाम बोला शहर में, मम्मी कसम बेबी

मेरे अगे जो बनती सी वैसे तू तो नहीं सी आ दिल तेरा इन्ना काला तू कदे कीता मैनू शो नहीं सी चल ठीक है जिमें भी है गल मुक्की चंगी है आ तेरे अर्गी नालों तो यारी टुटी चंगी है यारी टुटी चंगी है।

तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कटरीना, सच बोला था शाहरुख इश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

जैसे मैं रणवीर सिंह पिंग कहां कहां करूं मुझे बता दे तुझे खुश रखूंगा लाइफ टाइम मेरा ये वादा बेबी जितना मुझे प्यार है दिल्ली के मोमो से उतना तुझसे प्यार

काटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है, सारा पूछूं आज किसका ख्याल है।

पे मैं चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन, मिट्टी पे पड़े जब उसके कदम, करते सक्समी

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार रातां में वह भी एक रात हुआ है। आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वह एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

हुण तेरा मैनू मोह नहीं आउंदा, तैनू भी पता क्यों नहीं आउंदा। पागल कमली चली रहन दे, बस हुण मैनू कल्ली रहन दे, बस हुण मैनू कल्ली रहन दे।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।